सुप्रभात। FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। आज सोमवार है। शक संबत 1948, वैशाख माह की तिथि 28, तदनुसार 18 मई ईस्वी सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं। समाचारों के लिए चलते हैं आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, SME, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई 6ठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Neena Arkel. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last night. Prime Minister Modi was awarded Sweden's highest honour, the Royal Order of the Polar Star, Degree Commander Grand Cross, in recognition of his exceptional contributions to bilateral ties and his visionary leadership. The award is the highest distinction that can be given to a head of government. This is Prime Minister Modi's 31st international honour. During the delegation-level talks, the two leaders reviewed the full spectrum of India-Sweden relations and agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership, marking a major milestone in the relationship. The two leaders also agreed to identify new opportunities to the spirit of the India-EU strategic partnership and recently concluded the India-EU FTA for the benefit of the people. Earlier, the Prime Minister's aircraft was escorted by Swedish Air Force jets as it entered the European country's airspace. He was given a warm welcome at the airport by his Swedish counterpart in a special gesture. In the fourth leg of his visit, the Prime Minister will reach Norway today for the third India-Nordic summit and bilateral engagements. This will mark the first Prime Ministerial visit from India to Norway in 43 years. Mr. Modi will call on King Harald V and Queen Sonja and hold bilateral talks with Prime Minister Jonas Gahr Støre. Mr. Modi will also address the India-Norway Business and Research Summit along with the Norwegian Prime Minister. The visit will provide an opportunity to review the progress made in India-Norway relations and explore avenues to further strengthen them. In the fourth leg of his visit, the Prime Minister will reach Norway today for the third India-Nordic summit and bilateral engagements. This will mark the first Prime Ministerial visit from India to Norway in 43 years. Mr. Modi will call on King Harald V and Queen Sonja and hold bilateral talks with Prime Minister Jonas Gahr Støre. Mr. Modi will also address the India-Norway Business and Research Summit along with Norwegian Prime Minister. The visit will provide an opportunity to review the progress made in India-Norway relations and explore avenues to further strengthen them. Congress leader V.D. Sadishan will be sworn in as Chief Minister of Kerala today. The Chief Minister designated yesterday evening unveiled a 21-member UDF cabinet ahead of today's swearing-in ceremony. Of the 21st ministers, 14, including Sadishan himself, are first-timers. Announcing the cabinet after submitting the list of ministers to Governor Rajendra Arlekar, Mr. Sadishan said the entire UDF ministry will be sworn in together. Congress secured 11 ministerial berths besides the chief minister's post. Mr. Sadishan also announced the Thiruvanchur Radhakrishnan will be the speaker and Shanimol Usman will be the deputy speaker. India has expressed deep concern at the attack targeting the Barakah nuclear facility in the UAE. In a statement, Ministry of External Affairs said such actions are unacceptable and represent a dangerous escalation. New Delhi has urgently called for restraint and a return to dialogue and diplomacy. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda has arrived in Switzerland to participate in the 79th World Health Assembly. The six-day event will begin today in Geneva. In a social media post, Mr. Nadda said that his year's theme, Reshaping Global Health, a Shared Responsibility, highlights the importance of collective action in addressing global health challenges. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Rajasthan Royals by 5 wickets at Arun Jaitley Stadium in Delhi last night. Earlier in another match, the Delhi Royal Challengers Bengaluru defeated Punjab Kings by 23 runs in Dharamshala. In today's fixture, Chennai Super Kings and Sunrisers Hyderabad will clash at M.A. Chidambaram Stadium in Chennai at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
2: आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

जनकपुर यात्रा के अंतिम चरण में ऋषि विश्वामित्र के साथ श्री राम तथा लक्ष्मण गंगा तट पर पहुंचे, जहां ऋषि ने उन्हें गंगावतरण की कथा सुनाई। जनकपुर पहुंच राजा जनक की नगरी की बनावट और उसकी शोभा देख दोनों भाई अत्यंत प्रसन्न हुए। नगरी में अनेक बावलियां, कुएं, तालाब, उसमें खिले रंग रंग के कमल, पक्षियों का कलरव, वाटिका में फूलों पर गुंजन करते भंवरे और नगर के चारों ओर फूल पत्तों से लदे वृक्षों की मनोहारी सुषमा का वर्णन शब्दों से परे है। नगर के बाजार की अपनी अलग छवि है। सुंदर चौराहे और गलियां जैसे सदा सुगंध से सींची रहती हैं। राजा जनक के निवास स्थान की भव्यता और ऐश्वर्य देखकर देवता भी चकित हो जाते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। कलाकार थी वाणी जयराम। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है, प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण।

श्रोताओं, अभी आपने सुना आरती मुखर्जी और साथियों को। कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में।

लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में गाए इस भक्ति गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं।

और अब श्रोताओं आइए बताते हैं आपको आज के प्रातःकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के विषय में। 6:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार होंगे राजेश चटर्जी। सुबह 7 समय होगा हमारा कार्यक्रम जोहार चाईबासा का। सुबह 8 समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से 8:30 पर। 8:40 पर आपको सुनवाएंगे लोकगीत के कार्यक्रम माटी की महक में। आज उड़ान लोकगीत कलाकार होंगे रमेश लकड़ा और उनके साथी।

सुबह 9 बजे श्रोताओं कार्यक्रम प्रसारित करेंगे विविधा, और कार्यक्रम विविधा में आज हम चर्चा करेंगे विश्व एड्स वैक्सीन दिवस पर और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर। 9:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंजन का प्रसारण होगा, और सुबह 10 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक होंगे NCERT। और 10:30 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची के केंद्र, जहां से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। हमारे सायंकालीन सभा की शुरुआत होगी 5:02 पर। तो श्रोताओं, अभी आप जानकारी ले रहे थे आज के प्रातःकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

0: श्रोताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: राजेश चटर्जी के स्वर में गाए इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है।

कार्यक्रम जोहार चाय बसा सुनने वाले सभी श्रोताओं को निशा का जोहार। श्रोताओं, सुबह की इस प्यारी और ताजगी भरी बेला में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस विशेष कार्यक्रम जोहार चाय बसा में, जहां बात होगी मोहब्बत की, दिल की, स्वास्थ्य की और योग की। क्योंकि जीवन में अगर प्यार हो, मन में सकारात्मकता हो और हमारा शरीर स्वस्थ हो तो जिंदगी सचमुच खूबसूरत बन जाती है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सुरीला और प्रेरणादायक सफ़र, जिसमें हम बात करेंगे योग स्वास्थ्य की भी। दोस्तों, जिस इंसान के मन में प्रेम, जीवन में अनुशासन और दिनचर्या में योग होता है, उसका जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। मोहब्बत केवल किसी व्यक्ति से नहीं, अपने शरीर से भी कीजिए और अपने स्वास्थ्य से भी कीजिए। सुबह का थोड़ा सा योग, सकारात्मक सोच और चेहरे की मुस्कान हमारे पूरे दिन को बेहतर बना सकती है।

दोस्तों, प्यार की शुरुआत अक्सर एक खूबसूरत एहसास से होती है, जब दिल चाहता है कि सामने वाला हमारे जज्बात समझे। और अगर मोहब्बत के साथ अपनापन और विश्वास जुड़ जाए तो मन भी स्वस्थ रहता है। इन्हीं भावनाओं के साथ सुना आपने ये प्यारा सा गीत, आशा भोसले और मुकेश की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था मोहब्बत इसको कहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यदि हम प्रतिदिन 15 मिनट प्राणायाम करें तो हमारा तनाव कम होता है, मन शांत रहता है। अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी जैसे योगासन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं। स्वस्थ शरीर में ही प्रेम और सकारात्मकता लंबे समय तक बनी रहती है दोस्तों। और अब हम जिस गीत को आपको सुनवाने जा रहे हैं, उसका मोहब्बत का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन सच्चा प्यार इंसान को मजबूत बनाता है। और याद रखिए, तनाव से दूर रहने के लिए मन को खुश रखना बहुत ही जरूरी है। संगीत और योग दोनों ही मन को सुकून पहुंचाते हैं। और सुनिए ये प्यारा सा गीत, किशोर कुमार का गाया, फिल्म लावा से। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत है आर डी बर्मन का।

0: आते हैं
1: मेरी जूती से।
0: जूता पॉलिश करेगा, आह जूता पॉलिश करेगा, लेकिन तुम पर मरेगा। चाहे जमाना कहे हमको दीवाना, अजी हम तो मोहब्बत करेगा।

0: क्यों ना बताओ हमको हम जिए कैसे भला ये तो बताओ हमको।
1: डूब मरो।
0: डूबेगा नहीं तरेगा छप छप छप छप छप छप छप डूबेगा नहीं तरेगा प्यार से हम नहीं डरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना आज हम तो मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना आज हम तो मोहब्बत करेगा।
2: वाह दोस्तों, जब दिल किसी से प्यार करता है तो ज़िंदगी में एक नई ऊर्जा आ जाती है। ठीक उसी तरह योग भी हमारे शरीर में नई ऊर्जा भर देता है। अभी आपने सुना किशोर कुमार जी की मस्ती भरी आवाज़ में फिल्म दिल्ली का तुग का ये गीत मजरू सुल्तानपुरी के बोल और रवि के धुन पर। और अब दोस्तों, हमें अगर जीवन में खुश रहना है तो हमें तीन चीज़ें जानना बहुत ही जरूरी है। हमारे जीवन में योग को लाना होगा, चेहरे पर मुस्कान लानी होगी और दिल में मोहब्बत रखना होगा। अगर ये तीनों मिल जाएं तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत बन जाएगी। पहला प्यार और सुबह की पहली ताजगी दोनों ही हमारे दिल को बहुत ही सुकून पहुंचाते हैं और जब मन खुश होता है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो सुनिए इस खूबसूरत एहसास को लेकर ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, मोहब्बत एक रिश्ता नहीं बल्कि ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार है। जहाँ सच्चा प्यार होता है, जहाँ विश्वास होता है, त्याग होता है और आत्मा का जुड़ाव होता है। कहा भी गया है, मोहब्बत इंसान को बेहतर इंसान बना देती है। तो इसी पवित्र भावना को आपने अभी सुना फिल्म मयूर पंख से। बोल लिखे थे हसरत जयपुरी ने और धुन शंकर जयकिशन का था। इसे गाया था लता मंगेशकर ने। और अब दोस्तों सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
4: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
5: तीन नाले बड़ा परिवार जो तो बनवा इन मरन बेटा क्रांति बेसरा आले नवागे नेहर में ना बले नवा नुकन परिस्थिति रे बले सब बड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे हम बले रुड़ तो बन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
6: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउका कहाँ बना है वो लोग आउका वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
7: नाम है रणबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आई में हमरे घर है बहुत दुख के बात होते हम बात हो जाए
8: तुम लोग बुरन सिंह काम सोए अनिता थामसोए भरूपा ऐसा करना ऐसे दुकुरा में ना आया यापा में इरिया तपा में इरिया वाह बेटा निका
9: अन्य न तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्य हम दो कोदमरी कोड़ा उड़ो पटन पटन तुम कितने कोड़ा मैंने में बुरी बुरी ने बागिया तोड़ के ने दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो में लड़ाई चलाओ तमा दुर्गम गई अंदर जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेरे मिया
10: अलिंग मुनि सुरेन तो ये ते आप ही लेते ना लिंग से जा हुरा रे मिना हीरो जिता हुरा रे मिना हीरो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया न तुम ते ना मिले आप ही लेते ना।
4: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख दो बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
0: और इस अंतराल के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम जोहार चाईबासा में आपका फिर से स्वागत है। हम आपको सुना रहे हैं जोहार चाईबासा कार्यक्रम में कुछ बॉलीवुड फिल्मी गीत और इसके साथ बात कर रहे हैं कुछ स्वास्थ्य पर। और अब सोचता हूँ मोहब्बत सिर्फ एक शब्द नहीं, हमारे लिए एक एहसास है, एक विश्वास है। जब किसी की खुशी अपनी खुशी लगने लगे, किसी का दर्द अपना दर्द महसूस होने लगे, तो शायद उसी को मोहब्बत कहते हैं। और जब मन प्यार से भरा हो, तनाव से दूर हो जाता है, तो इन खूबसूरत एहसासों के साथ हम आपको सुनवा रहे हैं आपको ये गीत।

बिन देखे और बिन पहचाने तुम पर हम कुर्बान। मोहब्बत किसको कहते हैं, मोहब्बत किसको कहते हैं, बिन देखे और बिन पहचाने तुम पर

0: कुर्बान। मोहब्बत किसको कहते हैं, मोहब्बत किसको कहते हैं।
1: इन खूबसूरत बोलों को लिखा था शैलेंद्र ने और धुन से सजाया था शंकर जयकिशन ने। आवाज मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम जब प्यार किसी से होता है। दोस्तों, जैसे रिश्तों को निभाने के लिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है, वैसे ही शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। रोज़ सुबह कुछ मिनट योग और प्राणायाम अवश्य करें, जिससे कि हमारा मन शांत रहता है, तनाव कम होता है और दिल भी स्वस्थ बना रहता है। दिन भर काम करने के लिए ऊर्जा बनी रहती है। स्वस्थ और खुशहाल रिश्ते दोनों जिंदगी को सुंदर बनाते हैं। और अब हमारे कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं अगला गीत। दोस्तों, प्यार का नाम सुनते ही हमारे दिल में एक मीठी सी धड़कन जाग उठती है। मोहब्बत जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है, जो इंसान को भीतर से मजबूत बना देता है। और जब दिल खुश रहता है तो उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर भी दिखाई देता है। तो सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, कुमार शानू और अलका याग्निक का गाया, राहत इंदौरी के बोल है, अनु मल्लिक का धुन। फिल्म का नाम है दिल कितना नादान है।

जोहार चाईबासा का कार्यक्रम। और जोहार चाईबासा कार्यक्रम में हम गानों के अलावा आपको दे रहे हैं कुछ स्वास्थ्य टिप्स भी। दोस्तों, आजकल लोग छोटी छोटी बातों में तनाव ले लेते हैं, लेकिन याद रखिए, खुश रहना भी एक दवा है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो खुलकर हंसिए, संगीत सुनिए, रोज थोड़ा योग कीजिए और पॉजिटिव थॉट वाले लोगों के साथ रहिए। और अब सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का अगला गीत। मोहब्बत हर किसी की किस्मत में एक अलग कहानी लिखती है दोस्तों। किसी को खुशी देती है तो किसी को इंतजार, लेकिन सच्चा प्यार इंसान को धैर्य और उम्मीद दोनों ही सिखाता है। और सुनते हैं इन्हीं एहसासों के साथ फिल्म बरसात की रात का ये गीत, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन पर, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजों में।

दोस्तों, मोहब्बत के सफ़र में जहाँ खुशियाँ होती है, वहीं कभी कभी दर्द और तन्हाई भी साथ चलती है। जब प्यार अधूरा रह जाए, विश्वास टूट जाए, दिल की आवाज़ आंसुओं में बदल जाए, लेकिन जिंदगी का यही सच हमें मजबूत भी बनाता है। और इसके साथ ही योग श्रोताओं हमें मानसिक शक्ति देता है, संगीत हमारे टूटे हुए मन को सहारा देता है। और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं मुगले आजम का ये अमर गीत, मोहब्बत के दर्द, इंतजार और टूटे हुए एहसासों को बहुत खूबसूरती के साथ बयां कर रहा है। तो सुनते हैं लता मंगेशकर की मधुर आवाज़ में ये सदाबहार नगमा।

दोस्तों, जिंदगी में अगर हमारा दिल स्वस्थ है और मन सकारात्मक है तो हर रिश्ता खूबसूरत है। मोहब्बत केवल पाने का नाम नहीं, निभाने का भी नाम है। जब प्यार सच्चा हो तो इंसान दुनिया की हर मुश्किल का सामना कर लेता है। मोहब्बत इंसान को जीने की वजह देती है और योग इंसान को हर परिस्थिति में मजबूत बने रहने की शक्ति देता है। इन्हीं भावनाओं के साथ आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सड़क का यह बेहद ही लोकप्रिय गीत, अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू का गाया, समीर के बोल, नदीम श्रवण के धुन पर।

दोस्तों, प्यार भरे गीतों, योग के संदेशों और स्वास्थ्य की इन बातों के साथ हमारा आज का जोहार चाय बसा का विशेष कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है यह संगीत भरा सफर आपके दिल को सुकून और चेहरे पर मुस्कान अवश्य दे गया होगा। हम आकाशवाणी के चाय बसा केंद्र से बोल रहे हैं और इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचारों के लिए चलेंगे आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोटेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोटेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोटेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
1: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडिश उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक

0: स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की।
3: कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए यूडीएफ कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई जयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
5: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल V.A. वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331-0481 और 0112371-71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने एचडी देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
6: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और AI में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। होर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। NDA सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का ये बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और NDA की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नवभारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: कंपनियों का भारत में विशाल अनुभव है। भारत 5G से 6G ट्रांजेक्शन, AI एनेबल्ड नेटवर्क्स, सिक्योर कनेक्टिविटी और डिजिटल इंक्लूजन में बड़ा पार्टनर बन सकता है।
1: The Ministry of External Affairs has said that business leaders and CEOs who met Prime Minister Narendra Modi in Sweden expressed strong interest in India and appreciated the country's transformation driven by sustained economic reforms over the past several years. Addressing reporters after the European Roundtable Industry meeting, MEA Secretary West C.B. George said that CEOs and senior industry leaders highlighted the significant changes they have witnessed in India in recent years,
2: which was attended by a large number of key companies in Europe. I would like to highlight that in his meetings today with the CEOs and other senior leaders from the business, they all highlighted about their interest. You know, they have been observing India for last few years. They have been investing in India for last few years. What they have seen is a complete transformation in India in the last few years. They emphasized that.
1: In the fourth leg of his visit, the Prime Minister will reach Norway today for the third Indian-Nordic summit and bilateral engagements. This will mark the first prime ministerial visit from India to Norway in 43 years. Mr. Modi will call on King Harald V and Queen Sonia and hold bilateral talks with Prime Minister Jonas Gahr Støre. Mr. Modi will also address the Indian-Norway Business and Research Summit along with the Norwegian Prime Minister. The visit will provide an opportunity to review the progress made in Indian-Norway relations and explore avenues to further strengthen them. Congress leader V.D. Satheeshan will be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Keralam Governor Rajendra Vishwanath Arlekar will administer him oath of office and secrecy at a function in Thiruvananthapuram this morning. The Chief Minister-designate unveiled a 21-member UDF cabinet last evening ahead of today's swearing-in ceremony. More from our correspondent.
3: The Congress-led UDF ministry is being sworn in today in Keralam after a gap of 10 years. The Chief Minister and 20 other ministers will take oath at a function organized at Central Stadium, Thiruvananthapuram. 16 members of the new ministry, including Chief Minister V.D. Satheeshan, are becoming ministers for the first time. UDF workers in large numbers have been arriving in the state capital since yesterday afternoon to witness the swearing-in ceremony. Senior leaders, including Congress President Malik Arjun Kharge, leader of the opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, the chief ministers of Karnataka, Himachal Pradesh and Telangana, outgoing chief minister Pinarayi Vijayan and BJP state president Rajiv Chandrasekharan are expected to attend the ceremony today. Vidhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
1: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Union Home Minister Amit Shah arrived in Raipur last evening on a two-day visit to Chhattisgarh. During his visit to the state, Mr. Shah will participate in several programs in Raipur and Bastar. A report from our correspondent.
4: On the first day of his visit to Chhattisgarh, Union Home Minister Amit Shah will flag off new vehicles under the Emergency Response Service Dial 112 in Raipur this morning. Later, he will travel to Bastar and inaugurate a public convenience center at Netanar village in the district. The center is aimed at providing easier access to government and digital services for people living in remote areas. Thereafter, Mr. Shah will reach Jagdalpur and pay tribute to Martyrs at Amar Vatika. In the afternoon, he will interact at Badal Academy in Jagdalpur with families of martyrs, security personnel, people affected by Naxal violence and representatives of various local communities. In the evening, he will also attend the Bastar Ke Sang folk cultural program. This is Mr. Shah's first visit to the state after Chhattisgarh was declared Naxal free. Vikalp Shukla, Akashwani News, Raipur.
1: The trail of the neat paper leak case has now reportedly extended from Latur to Nanded in Maharashtra. A parent has been accused of purchasing the leaked question paper for 5 lakh rupees for his daughter. A CBI team questioned the individual yesterday and has summoned him to appear before the agency's Pune office tomorrow for further investigation. Meanwhile, in the same case, the Delhi Rouse Avenue Court has remanded Pune-based accused Manisha Mandhare to 14 days of CBI custody. According to the agency, Mandhare was a key conspirator in the leak of the NEET biology examination paper. The India Meteorological Department has said that the southwest monsoon is likely to set in over Kerala on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date of 1st of June. Our correspondent reports that conditions are favourable for the southwest monsoon to advance into more parts of the southeast Arabian Sea, Bay of Bengal, Andaman Islands and Andaman Sea over the next 2 to 3 days.
5: IMD said Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, coastal Karnataka, Keralam and Mahe are likely to experience heavy rainfall today. The Met Department said that Lakshadweep, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura, South Interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal are also likely to witness similar conditions. Meanwhile, the Weather Department forecast a heat wave to severe heat wave conditions over West Uttar Pradesh today. Heat wave conditions are very likely at isolated places over East Uttar Pradesh, Haryana, Chandigarh, Delhi, Madhya Pradesh, Marathwada, Punjab, Rajasthan, Telangana and Vidarbha today. According to IMD, a gradual rise in maximum temperatures by 3 to 5 degrees Celsius is expected over many parts of northwest India during the next 3 to 4 days. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
1: In our bilingual live phone-in program Public Speak today, we will bring you an insightful discussion on the ongoing Phase 1 of Census 2027, the House Listing and Housing Census. V.A. Varade, Deputy Registrar General in the Office of the Registrar General and Census Commissioner of India, Ministry of Home Affairs, will be in our studio to answer listeners' queries. To participate, simply dial 011-233-1444 from 9:30 p.m. onwards tonight. Alternatively, you can send your queries via WhatsApp to 9289094044 or post your questions on X using the hashtag AskAIR. On to sports. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Rajasthan Royals by 5 wickets at Arun Jaitley Stadium, Delhi last night. Chasing a target of 194 runs set by Rajasthan Royals, Delhi Capitals scored 197 for 5 in 19.2 overs. KL Rahul was the top scorer with 56 runs. For Delhi Capitals, Mitchell Starc took 4 wickets, which was later adjudged player of the match. And now for a look at today's newspapers, it's over to Neera Arakul.
6: Thank you, Shagun. Sweden confers its highest honor on PM Narendra Modi. The Royal Order of the Polar Star Degree Commander Grand Cross is Prime Minister Modi's 31st international award, is the top headline in the Pioneer, while the Asian Age headlines trade to chips. India inks 14 Netherlands pacts, lifts ties, Modi jettin, hold talks, adopt strategic partnership roadmap. The statesman mentions metro to run extra rain train trips to encourage use of public transport. This capacity expansion aims to ensure uninterrupted service and efficient passenger management. UAE nuclear plant attacked by drone, testing Iran truce, writes the Hindustan Times. While the Times of India states drone attack sparks fire at UAE nuclear plant. In an editorial titled Diversification Gains, the Hindu commends India's export performance in April 2026, underscoring the attempts by the government and industry to diversify in terms of crisis. And finally, the Indian Express writes HPV vaccination sees uptake, 1,100 girls receiving the shot. The figure reflects a slow but steadily accelerating start to one of the country's most important public health drives in recent years in preventing cervical cancer. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Neera. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. India and Sweden decide to elevate their bilateral ties to strategic partnership. Prime Minister Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission initiatives. Congress leader V.D. Satheeshan to be sworn in as Chief Minister of Kerala today. Southwest monsoon likely to hit Keralam coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And with that, We end the morning news. Have a nice day.
7: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। जेटेड क्षेत्रीय भाषाओं में मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल करने पर होगा विचार। मंत्रियों की कमेटी की पहली बैठक आज। रेलवे ने गोमती नगर से खुदरा रोड तक समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की। गोमो, गया, वाराणसी, जौनपुर और गोरखपुर होकर गुजरेगी रेल। दुमका में अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह का खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार। निशानदेही पर पश्चिम बंगाल से चोरी के वाहन बरामद, पुलिस कर रही नेटवर्क की जांच। राज्य के कई हिस्सों में आज गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान। कल से अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और ताशकंद में रग्बी सेवन्स में भारतीय पुरुष टीम ने रजत पदक जीता, महिला टीम चौथे स्थान पर रही। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने AI और डीप टेक को भविष्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ बताया है। कल अहमदाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
8: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
7: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के 319 इंटर और प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस कदम से राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था और भी मजबूत होगी। समारोह में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव भी उपस्थित रहेंगे। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को शामिल करने के लिए बनी सरकार की समिति की आज पहली बैठक होगी। इस समिति में 5 मंत्रियों को शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट भवन में दिन के 11:30 बजे से बैठक होगी। समिति में मंत्री दीपिका पांडे, राधा कृष्ण किशोर, संजय यादव, योगेंद्र प्रसाद और सुदिव्य कुमार सोनू शामिल हैं। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से रांची में आज जनजातीय किशोरियों के स्वास्थ्य पोषण एवं सशक्तिकरण के लिए सशक्त परियोजना का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने राजधानी में पेट्रोल और डीजल की किल्लत की खबरों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि तेल कंपनियों के पास पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना देने और घरों में अनावश्यक रूप से तेल जमा नहीं करने की अपील की है।
9: हम लोगों की समीक्षा में पाए गए कि जो पहले से जितना सप्लाई थी वो सप्लाई अभी भी उपलब्ध है, और लेकिन किसी कारणवश जो एक पैनिक की अवस्था में बहुत सारे लोग जो है जितना रिक्वायरमेंट है उससे अधिक गुना में जो भर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है सप्लाई में जो समस्या आ रही है, तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने उनको बताए हैं कि पैनिक में किसी तरह का लोग न आए।
7: विश्व पर्यावरण दिवस 2026 अभियान के 3rd दिन धनबाद मंडल ने कल विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर प्लास्टिक मुक्त यात्रा के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया। इसके तहत यात्रियों को दोबारा उपयोग योग्य बोतलों के इस्तेमाल, प्लास्टिक प्रदूषण रोकने और रेल परिसर में कचरा न फेंकने की अपील की गई। साथ ही पोस्टर, उद्घोषणा और सीधे संवाद के जरिए पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा के लिए गोमती नगर से खुदरा रोड तक समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है।

0: पुराना आपराधिक इतिहास रहा है।
1: जांच के क्रम में एवं जब इनको छानबीन किया गया, इनकी तलाशी ली गई, तो कुल मिलाकर हमें 3 स्मार्टफोन, 20 ग्राम ब्राउन शुगर, 1 अपाचे गाड़ी और 1 क्रेटा कार पकड़ाया गया। अनुमानित मूल्य इसका लगभग 10 से 15 लाख तक होता है, मतलब होलसेल में जब इनको, लेकिन जब ये लोग इसको तोड़ तोड़ के बेचते हैं या जो खुदरा क्रम में बेचते हैं, तो इनका रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है।
0: दुमका जिले में पुलिस ने सक्रिय अंतरराज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। तीनों की निशानदेही पर मुफस्सिल और शिकारी पाड़ा थाना क्षेत्र से चोरी हुए 2 ट्रैक्टरों को पश्चिम बंगाल से बरामद किया गया है। पुलिस गिरोह के अन्य संभावित नेटवर्क की जांच कर रही है। राज्य के कई हिस्सों में आज गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
2: आने वाले दिनों में भी आपको कुछ जगह पर थंडरस्टॉर्म के साथ में बारिश, तेज हवा, आंधी देखने को मिलेगी। 3 दिन के लिए जो विंड स्पीड है उसमें 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गस्टिंग टू 60। 18 में थोड़ा सा हवा की गति बढ़ सकती है, जिसमें कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से विंड स्पीड गस्टिंग टू 70 भी कुछ जगह पर जा सकती है गर्जन वज्रपात के साथ में।
0: कल जिले हजा का चांद नहीं दिखने के कारण देश भर में 28 मई को बकरीद मनाई जाएगी, यह घोषणा इमारत ए सरिया ने की। ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित पहले CASA रग्बी सेवन्स 2026 में भारत की सीनियर पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल किया, जबकि सीनियर महिला टीम 4थे स्थान पर रही। पुरुष टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार 4 मैच जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। पुरुष टीम में झारखंड के डेविड मुंडा भी शामिल है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मुख्यमंत्री को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा लिखे पत्र की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा दैनिक जागरण ने लिखा है, स्वीडन और नीदरलैंड्स के साथ रिश्तों को रणनीति साझेदारी में बदलेगा भारत। प्रभात खबर की सुर्खी है, JTET भाषा विवाद सुलझाने के लिए आज बैठक करेंगे 5 मंत्री। दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश में राजधानी एक्सप्रेस के AC कोच में आग, 15 मिनट में 68 यात्रियों को बचाया। हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर लिखा है, जलापूर्ति व्यवस्था पर मुख्य सचिव सख्त, सभी जिलों को त्वरित कार्रवाई के लिए कहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, JTET क्षेत्रीय भाषाओं में मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल करने पर होगा विचार, मंत्रियों की कमेटी की पहली बैठक आज। रेलवे ने गोमती नगर से खुर्दा रोड तक समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की। गोमो, गया, वाराणसी, जौनपुर और गोरखपुर होकर गुजरेगी रेल। दुमका में अंतरराज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह का खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार। निशानदेही पर पश्चिम बंगाल से चोरी के वाहन बरामद, पुलिस कर रही नेटवर्क की जांच। राज्य के कई हिस्सों में आज गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान, कल से अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और ताशकंद में रग्बी सेवन्स में भारतीय पुरुष टीम ने रजत पदक जीता, महिला टीम 4थे स्थान पर रही। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माई गॉव पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है। अपने आप पर आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। श्रोताओं, आज आपको सुनवा रहे हैं उरांव लोकगीत कलाकार हैं रमेश लकड़ा और उनके साथी।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के
3: भविष्य को नई दिशा दिखाओ। झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोकगीत के कार्यक्रम माटी की महक में उड़ान लोकगीत रमेश लकड़ा और साथियों के।

स्वर में। इसी के साथ हमारा आज का माटी की महक का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा, और कार्यक्रम विविधा में मैं आप सबों के साथ निशा। तो श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को निशा का नमस्कार।

श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा में आज हम बात करेंगे विश्व संग्रहालय दिवस पर और विश्व एड्स वैक्सीन दिवस पर। तो श्रोताओं, सबसे पहले जानते हैं विश्व संग्रहालय दिवस हम क्यों मनाते हैं। तो दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक ऐसी जगह की जहां हजारों वर्षों का इतिहास चुपचाप हमारे सामने खड़ा हो, जहां पुरानी सभ्यताओं की खुशबू हो, वीरों की कहानियां हो, संस्कृति की झलक हो और मानव विकास की अद्भुत यात्रा दिखाई देती हो। ऐसे ही अद्भुत जगह को हम कहते हैं संग्रहालय। प्रत्येक वर्ष 18 मई को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत, इतिहास, कला और सभ्यता को समझने और संरक्षित करने की प्रेरणा देता है। श्रोताओं, संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का भंडार नहीं है, बल्कि ये समाज की स्मृति, ज्ञान और संस्कृति के जीवित केंद्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की शुरुआत वर्ष 1977 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम यानी ICOM द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य था लोगों को संग्रहालयों के महत्व के प्रति जागरूक करना और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए उन्हें प्रेरित करना था। इस दिवस को मनाने के पीछे विचार यह था कि संग्रहालय समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे केवल इतिहास को सुरक्षित नहीं रखते, बल्कि शिक्षा, अनुसंधान और सांस्कृतिक संवाद को भी बढ़ावा देते हैं। आज के दुनिया के 150 से अधिक देशों में हजारों संग्रहालय इस दिवस को विभिन्न कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से मना रहे हैं। सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि संग्रहालय है क्या। दोस्तों, संग्रहालय वह स्थान है जहां ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और कलात्मक वस्तुओं को संरक्षित रखा जाता है। इन वस्तुओं के माध्यम से हमें अतीत की जानकारी मिलती है। सरल शब्दों में कहें कि संग्रहालय इतिहास का एक जीवंत विद्यालय है। यहाँ रखी गई वस्तुएं हमें बताती है कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, उनका खान पान कैसा था, वे कौन सी कला जानते थे, विज्ञान और तकनीक का विकास कैसे हुआ, युद्ध, संस्कृति और सभ्यता, ये सब में परिवर्तन कैसे आए। दुनिया में विभिन्न प्रकार के संग्रहालय पाए जाते हैं। जैसे कुछ संग्रहालय ऐतिहासिक हैं, जहां इतिहास से जुड़ी वस्तुएं रखी जाती है। प्राचीन हथियार, सिक्के, दस्तावेज, ये सब सामान ऐतिहासिक संग्रहालयों में रखी जाती है। कला संग्रहालय, जहां चित्रकला, मूर्तिकला और कलात्मक वस्तुओं की को प्रदर्शित किया जाता है। विज्ञान और तकनीकी से संबंधित मॉडल

0: और प्रयोग विज्ञान संग्रहालय में किया जाता है। पुरानी सभ्यताओं और उत्खनन से मिली वस्तुओं को पुरातत्व संग्रहालय में रखा जाता है। लोक संस्कृति संग्रहालय में श्रोताओं, यहाँ किसी क्षेत्र की लोक परंपराएं, पहनावा, संगीत और जीवन शैली को सुरक्षित किया जाता है। संग्रहालयों का महत्व हमारी सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए है। यदि संग्रहालय ना हो तो कई ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें समय के साथ नष्ट हो जाएं। विद्यार्थियों के लिए संग्रहालय एक जीवंत पाठशाला है। श्रोताओं, किताबों में पढ़ी गई बातें यहाँ वास्तविक रूप में देखने को मिलती है। संस्कृति का संरक्षण हर समाज की एक संस्कृति होती है और संग्रहालय उस संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। संग्रहालय पर्यटन का भी बड़ा केंद्र होते हैं, जहां देश विदेश से लोग इन्हें देखने आते हैं। इतिहासकार, वैज्ञानिक और शोधकर्ता संग्रहालयों से अपनी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे भारत में प्राचीन सभ्यता और समृद्ध संस्कृति वाला देश होने के कारण यहाँ अनेक संग्रहालय हैं श्रोताओं, जो भारतीय इतिहास की महानता को दर्शाते हैं। भारत का प्रमुख संग्रहालय नेशनल म्यूजियम, जहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर आधुनिक भारत तक की हजारों वस्तुएं सुरक्षित हैं। यहाँ की प्रमुख आकर्षण वस्तुएं हड़प्पा सभ्यता की मूर्तियाँ, प्राचीन सिक्के, हथियार, राजसी वस्त्र और बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। इंडियन म्यूजियम यह भारत का सबसे पुराना और बड़ा संग्रहालय माना जाता है, जिसकी स्थापना 1814 ईस्वी में की गई थी। यहाँ ममी, प्राचीन मूर्तियाँ, जीवाश्म और दुर्लभ चित्रकला देखने को मिलती है। सालरजंग म्यूजियम, यह अपने दुर्लभ कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ दुनिया के विभिन्न देशों की कला की वस्तुएं रखी गई हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, श्रोताओं यह संग्रहालय भारतीय कला और इतिहास का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है, जिसकी वास्तुकला भी अत्यंत ही आकर्षक है। आज के युवा पीढ़ी मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में व्यस्त हैं, ऐसे समय में संग्रहालय युवाओं को अपनी ओर अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य करते हैं। जब युवा किसी संग्रहालय में जाते हैं तो उन्हें अपने इतिहास की जानकारी मिलती है, उनमें देशभक्ति की भावना जागती है, संस्कृति के प्रति सम्मान बढ़ता है, ज्ञान और जिज्ञासा विकसित होती है। तकनीकी के विकास ने संग्रहालयों को भी आधुनिक बना दिया है। आज कई संग्रहालय वर्चुअल टूर, 3D प्रदर्शन, डिजिटल स्क्रीन, ऑडियो गाइड, ऑनलाइन प्रदर्शनी की भी सुविधा देते हैं। इससे लोग घर बैठे भी संग्रहालयों का अनुभव कर सकते हैं। हमारे संग्रहालय किसी भी देश की सांस्कृतिक पहचान होते हैं। विदेशी पर्यटक जब भारत आते हैं तो वे हमारे संग्रहालयों को देखकर भारतीय इतिहास और संस्कृति को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि देश की छवि मजबूत होती है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलता है। हर वर्ष की तरह इस दिवस के लिए एक विशेष थीम निर्धारित की जाती है। यह थीम समाज और संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित है, जैसे कि संग्रहालय और शिक्षा, संग्रहालय और स्थिरता, संग्रहालय और समुदाय, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। इन विषयों के माध्यम से लोगों को संग्रहालयों से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। लेकिन आज संग्रहालय ज्ञान और संस्कृति के केंद्र होने के बावजूद भी कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिसमें कि मुख्य समस्या है धन की कमी। कई संग्रहालयों में उचित रखरखाव के लिए पर्याप्त बजट नहीं होता है। बहुत से लोग संग्रहालयों के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। कई संग्रहालय आधुनिक सुविधाओं से वंचित हैं। पुरानी वस्तुओं को सुरक्षित रखना एक चुनौतीपूर्ण काम है। तो आज संग्रहालयों को लोकप्रिय बनाने के लिए कई कार्यक्रम किए जा सकते हैं, जैसे कि स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए भ्रमण कार्यक्रम, डिजिटल तकनीक का प्रयोग करके आकर्षक प्रदर्शनी लगाकर, सोशल मीडिया प्रचार के द्वारा स्थानीय संस्कृति को जोड़कर और बच्चों के लिए विशेष गतिविधियां आयोजित कर संग्रहालयों को लोकप्रिय बनाया जा सकता है। भारत की संस्कृति विविधता से भरी हुई है दोस्तों। यहाँ हर राज्य की अपनी परंपरा, कला और इतिहास है। संग्रहालय इन विविधताओं को एक मंच पर प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि भारत केवल एक देश नहीं बल्कि संस्कृतियों का महासागर है। हमारी विरासत हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। तो यदि हमें अपने भविष्य को मजबूत बनाना है तो हमें अपने अतीत को अवश्य समझना होगा। संग्रहालय हमें यही सिखाते हैं, सभ्यता की यात्रा का संघर्ष ज्ञान और संस्कृति से बनी है। इसलिए आज आवश्यकता है हम संग्रहालयों का सम्मान करें, बच्चों को संग्रहालय ले जाएं, ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा करें और अपनी संस्कृति पर गर्व करें। तो दोस्तों, इतिहास केवल किताबों के पन्नों में नहीं, यह संग्रहालय के दीवारों में सांस लेता है, पुरानी मूर्तियों में मुस्कुराता है अमूल्य विरासत। तो आज इस अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर हम यह संकल्प लें कि हम अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और अपनी विरासत को अवश्य सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है उसका भविष्य भी धुंधला हो जाता है। विरासत की पहचान है संग्रहालय, इतिहास का सम्मान है संग्रहालय, सभ्यता की अमिट कहानी है भारत की शान है संग्रहालय। तो श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हमारे लिए एक दिवस नहीं बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों को पहचानने का एक अवसर है। संग्रहालय हमें अतीत से जोड़ते हैं, वर्तमान को समझाते हैं और भविष्य के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसलिए हमें संग्रहालयों के महत्व को समझना चाहिए और आने वाले पीढ़ियों को भी इसके प्रति जागरूक करनी चाहिए। और इसके बाद सुनते हैं ये अपील।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ। झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे हम बोले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
3: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहां बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
4: नाम है रंगबला देवी गाँव बारे हत्तो तो घर आई में हमरे घर बहुत दुख के बात होते अखन बात हो जा है।
5: नितुम बुरन सिंह तामसोय अनिता तामसोय भुरुपा सिना करना ऐसे दुखुरा मिना आज्ञा यापा मैं रियल तपा मैं रियल वाह बेटा निका
6: ᱟᱸᱡᱟᱢ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱵᱩᱢᱵᱟᱭ ᱠᱚᱲᱟᱜᱼᱟ ᱯᱟᱴᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ

0: ᱦᱚᱸ ᱫᱚ ᱠᱚᱫᱚᱢᱚᱱᱤ ᱠᱚᱲᱟ ᱩᱱᱤ ᱯᱟᱛᱟᱱ ᱯᱟᱛᱟᱱ ᱩᱛᱩ ᱠᱤᱛᱢᱟᱭ ᱠᱚᱲᱟ ᱢᱮᱱᱮᱢᱮ ᱩᱲᱤ ᱱᱮ ᱵᱟᱜᱮᱭᱟ ᱛᱚᱫ ᱠᱤᱧ ᱫᱚᱱᱟ ᱥᱮ ᱟᱨᱛᱤ ᱠᱚᱞᱚ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱚᱞᱚ ᱢᱤ ᱞᱟᱲᱟᱭ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱛᱟᱱᱟ ᱵᱩᱨᱩᱨᱮᱢ ᱜᱚᱭᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱭ ᱛᱮᱨᱮ ᱠᱟᱠᱟ ᱜᱩᱜᱩ ᱦᱚ ᱩᱱᱤ ᱵᱚᱠᱚ ᱠᱚ ᱠᱟᱠᱚ ᱱᱮᱞ ᱢᱤᱭᱟ
1: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱢᱩᱱᱤ ᱥᱩᱨᱮᱱ ᱯᱮ ᱛᱮ ᱟᱯᱤᱞᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱮ ᱟᱡᱟ ᱦᱩᱨᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱱᱟᱹᱭ ᱨᱚ ᱡᱤᱛᱟ ᱦᱩᱨᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱱᱟᱹᱭ ᱨᱚ ᱛᱚ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱦᱩᱨᱟ ᱛᱮ ᱥᱮᱥᱮᱱ ᱠᱟᱜᱼᱮ ᱩᱣᱟᱜᱮ ᱵᱤᱴᱟ ᱦᱩᱨᱮᱱ ᱠᱟ ᱟᱞᱮ ᱟᱭᱟ ᱱᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹᱢ ᱟᱯᱤᱞᱮ ᱛᱟᱱᱟ
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख दो बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
6: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर

0: ಸ್ವಯಂ ಹೀಗೆ ಕಟ್ಟಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: इन संदेशों के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा में आप सबों का फिर से स्वागत है. हम आपको बता रहे थे अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के बारे में, और अब और एक विशेष दिवस है श्रोताओं, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस. तो आज यानी आज 18 मई को पूरे विश्व में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है. यह दिवस उन वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और स्वयं सेवकों को समर्पित है जो एचआईवी और एड्स जैसे गंभीर बीमारी के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं. श्रोताओं, यह दिन केवल एक स्वास्थ्य अभियान नहीं बल्कि मानवता, जागरूकता और वैज्ञानिक प्रगति का प्रतीक भी है. आज पूरी दुनिया में लाखों लोग एचआईवी संक्रमण से प्रभावित हैं. आधुनिक चिकित्सा ने इस बीमारी को नियंत्रित करने में काफ़ी सहायता प्रदान की है, लेकिन अभी तक इसका स्थायी इलाज या पूर्ण प्रभावी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है. इसलिए विश्व एड्स वैक्सीन दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है. दोस्तों, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस की शुरुआत वर्ष 1998 में हुई, जिसकी प्रेरणा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के एक महत्वपूर्ण भाषण से मिली. उन्होंने 18 मई 1997 को कहा था कि एचआईवी संक्रमण को रोकने के लिए दुनिया को एक प्रभावी वैक्सीन की आवश्यकता है. इसके बाद 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जिसका उद्देश्य था लोगों में जागरूकता फैलाना, एचआईवी वैक्सीन अनुसंधान को प्रोत्साहित करना. एचआईवी और एड्स क्या है दोस्तों? एचआईवी का पूरा नाम है ह्यूमन एचआईवी, एक ऐसा वायरस जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है. यह वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है, विशेष रूप से CD4 कोशिकाओं पर. धीरे धीरे शरीर कमजोर होता जाता है और जिसपे अन्य बीमारियां हमला करने लगती है. जब एचआईवी संक्रमण गंभीर अवस्था में पहुंच जाता है तब उसे एड्स कहा जाता है. एचआईवी संक्रमण मुख्यतः असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त चढ़ाने से, संक्रमित सुई या इंजेक्शन के उपयोग से, संक्रमित मां से बच्चे में, संक्रमित चिकित्सा उपकरणों से. लेकिन यह जानना भी बहुत जरूरी है कि एचआईवी हाथ मिलाने से नहीं फैलता, साथ में खाने से भी नहीं फैलता, गले मिलने से भी नहीं फैलता, छींकने या खांसने से भी नहीं फैलता, मच्छर काटने से भी नहीं फैलता है. एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों से इसलिए भेदभाव करना बहुत ही गलत है. दुनिया भर में करोड़ों लोग एचआईवी संक्रमण से प्रभावित हैं. आधुनिक दवाओं से संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता. इसलिए वैज्ञानिक लगातार वैक्सीन बनाने में जुड़े हुए हैं. श्रोताओं, आज वैक्सीन संक्रमण को रोकने के लिए, मृत्यु दर को कम करने के लिए, नई पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए और स्वास्थ्य खर्च को कम करने के लिए बहुत ही जरूरी है. यदि प्रभावी वैक्सीन बन जाती है तो यह चिकित्सा जगत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी. एचआईवी वायरस बहुत ही जटिल और तेजी से बढ़ने वाला वायरस है श्रोताओं, यही कारण है कि इसकी वैक्सीन बनाना आसान नहीं है. एचआईवी अपना रूप बहुत जल्दी बदलता है, इसलिए एक वैक्सीन सभी प्रकार के वायरस पर अपना समान प्रभाव नहीं डाल पाती. यह वायरस उसी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है जो शरीर को सुरक्षा करती है। HIV लंबे समय तक शरीर में निष्क्रिय अवस्था में रह सकता है। वैक्सीन विकसित करने के लिए वर्षों तक परीक्षण और शोध करना पड़ रहा है, पड़ सकता है दोस्तों। दुनिया भर में कई वैज्ञानिक संस्थाएं HIV वैक्सीन पर शोध कार्य कर रही है, जिसमें कि WHO की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन HIV नियंत्रण और जागरूकता में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह विभिन्न देशों को स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश प्रदान करता है। UNAIDS का भी योगदान HIV और एड्स नियंत्रण के लिए वैश्विक स्तर पर कार्य कर रही है। आज विज्ञान और तकनीकी ने वैक्सीन अनुसंधान को एक नई दिशा प्रदान की है। जैव प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जीन अनुसंधान और आधुनिक प्रयोगशालाएं, इनकी सहायता से वैज्ञानिक नई संभावनाओं पर कार्य कर रहे हैं। भारत में सरकार कई सामाजिक संस्थाएं HIV रोकथाम के लिए कार्य कर रही है। यह संस्था भारत सरकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत ही कार्य करती है। इनके प्रमुख कार्य हैं जागरूकता अभियान, निःशुल्क जांच सुविधा, दवा वितरण, परामर्श सेवा और सुरक्षित जीवन शैली के लिए प्रेरणा प्रदान करना। कई बार लोग जानकारी के अभाव में HIV संक्रमित व्यक्तियों से दूरी बना लेते हैं, जो कि बहुत ही अमानवीय है। हमें समझना चाहिए कि HIV संक्रमित व्यक्ति भी सामान्य इंसान है, उन्हें सहयोग और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि भेदभाव मानसिक पीड़ा को बढ़ाता है। समाज का प्यार उनके जीवन में आशा ला सकता है। मानवता सबसे बड़ा धर्म है। युवा समाज आज सबसे बड़ी शक्ति है। जागरूकता फैलाने में युवाओं की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए आज के युवा सही जानकारी फैलाएं, अफवाहों से बचें, सुरक्षित व्यवहार अपनाएं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, सोशल मीडिया द्वारा जागरूकता फैलाएं, क्योंकि युवा जागरूक होंगे तो हमारा समाज अवश्य सुरक्षित रहेगा। तो श्रोताओं, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस पर स्वास्थ्य जागरूकता और वैज्ञानिक अनुसंधान का महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि HIV जैसे बीमारी से लड़ने के लिए केवल दवा नहीं बल्कि संवेदनशीलता, सहयोग और जागरूकता भी आवश्यक है। आज आवश्यकता है हम समाज में सही जानकारी फैलाएं, संक्रमित लोगों के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार करें और स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार बने। एक दिन अवश्य ऐसा आएगा जब विज्ञान की शक्ति और मानवता के सहयोग से HIV एड्स पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर लिया जाएगा। इसके साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का विविधा कार्यक्रम संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं और अब श्रोताओं सुनवा रहे हैं आपको फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंजन।

श्रोताओं, अभी आपने सुना मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को, रोशन के धुन पर लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म भीगी रात से। और अब सुनवा रहे हैं आपको हमारे कार्यक्रम का अगला गीत।

0: फिल्म कंपनी का ये गीत आपने सुना, नितिन राय कंवर का लिखा, संदीप चौटा के संगीत निर्देशन में, कुमार शानू और सोनाली बाजपेयी की आवाजों में।
1: भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
2: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
1: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
2: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
1: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: बदलो बदलो, आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बदलो बदलो, आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: इन संदेशों के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सबों का फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंजन, और कार्यक्रम रसरंजन के लिए अगला गीत हम लेकर आए हैं फिल्म क्रीचर 3D से। सुनते हैं मिथुन की आवाज में ये गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म दाग का ये गीत कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में, और अब कार्यक्रम के अंत में सुनवा रहे हैं आपको ये गीत। फिल्म का नाम है नजर, और श्रेया घोषाल की आवाज में सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
2: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
1: श्रोताओ, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
2: जी।
1: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
1: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
2: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी

0: करते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
1: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
0: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं,
1: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
0: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी,
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर,
0: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
1: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
0: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी, आपको साधुवाद।
1: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
0: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है।
1: जी, और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं।
0: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं।
1: जी,
0: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
0: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
1: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
0: तो साथियों, इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
1: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न, हमारा प्रश्न था, बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं।
0: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
1: जी विमरेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओं, अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है।
1: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
3: वी आर फाइन सर।
4: आई एम फाइन।
5: आई एम गुड सर।
2: फाइन, गुड। ओके, सो टेल मी, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट?
4: आई लाइक प्लेइंग सर।
6: आई लाइक पेंटिंग सर।
2: वेरी गुड, एनीवन एल्स?
7: सर, आई लाइक सिंगिंग।
8: आई लाइक प्लेइंग विद माय पेट्स।
2: ओह, दैट्स ग्रेट। नाउ टेल मी, Do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
3: Yes, sir.
6: We like.
2: Lovely butterflies?
3: Yes, sir.
2: And lovely colorful chirping birds?
3: Yes, sir. We like it.
2: That's very nice, children.
6: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
2: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
3: Yes.
2: The rivers,

0: will find that the clouds also have different colors from time to time.
1: Yes, sir.
2: I have seen rainbow.
3: It has 7 colors.
0: So, children, whenever you see the clouds, they have different
1: shapes.
0: Yes, shapes. And they have different
1: colors.
0: Very nice.
4: Show of Clouds. You were just listening to this program. Program Coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical Coordinator, Butty Lang Lingdo. Child Singer, Angel. Child Artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound Recordist, Mayank Kumar. Assistance in Production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIETNCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम. अगले कार्यक्रम का शीर्षक है तुलसी गौड़ा.
5: ये कार्यक्रम जंगल की एनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली महान आदिवासी पर्यावरण विशेषज्ञ तुलसी गौड़ा के जीवन, उनके पर्यावरण पर शोधों और वृक्षों को बचाने के उनके प्रेरणादायक अभियान की जानकारी देता है. विशेष रूप से मातृ वृक्षों पर उनकी खोज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है.
6: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहनी
7: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती.
8: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा.
6: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
9: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है.
10: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार. आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
11: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण.
10: यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है. देश भर में प्रसन्नता की लहर.
12: नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है. राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा.

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य में वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों में करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
3: अच्छा,
2: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
3: अरे ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
2: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
3: बिल्कुल होता है।
2: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से पढ़ते हैं।
3: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
2: है ना
3: जी।
2: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
3: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
2: हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
0: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
2: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
0: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
1: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
0: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
4: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
2: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
4: अच्छा।
2: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
4: अच्छा।
2: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
4: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
2: बिल्कुल सही सुना है आपने। मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
4: अच्छा।
2: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
4: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
2: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हों तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं, वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं, समझे?
4: जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मात्र वृक्षों के बारे में।
2: हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है, ठीक है ना?
4: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज, एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत धन्यवाद।
0: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय

0: पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
1: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुलसी गौड़ा और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक थे NCERT। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची केंद्र के कार्यक्रम।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कार्यक्रम जोहार रांची में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ अमृता,
1: और मैं हूँ सुनीता। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार
0: जोहार। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे।
1: बिल्कुल अमृता, श्रोता हमारे बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे ही रहेंगे, और अच्छे इसलिए भी लगते हैं कि हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। तो जीवन की जो सफलता का श्रेय, हर किसी का अपना स्वभाव होता है,
1: बिल्कुल,
0: है
1: बिल्कुल,
0: लेकिन
1: बिल्कुल।
0: अपनों के लिए जो अपयश या बुराई हंसते हंसते सह लेना, ये गुण सभी में नहीं होते।
1: हाँ बिल्कुल, तुम्हारी बात बिल्कुल ही सही है, बहुत ही सही बात कही है तुमने। देखो, सफलता का सहरा सब लोग अपने सिर पे बांध लेते हैं, लेकिन जो बुराई है ना, उसको लेने का साहस बहुत कम लोगों में होता है
0: जी।
1: और खासकर जब आप किसी और के लिए अच्छा करते हो और उसका अच्छा बुरा सब अपने सर पे ले लेते हो, तो ये गुण हर किसी में नहीं होता।
0: हाँ।
1: हर आदमी की अपनी पहचान, अपना पर्सनालिटी, अपना व्यक्तित्व होता है
0: जी। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए अपनी खुशी, यहाँ तक कि अपनी छवि भी दांव पे लगा देते हैं।
1: हाँ, और आज के इस दौर में ऐसे लोगों का मिलना बहुत ही मुश्किल है।
0: बिल्कुल ही ऐसे लोग।
1: हाँ, लेकिन अगर जो हैं, तो समझ लो कि आज ये दुनिया उनकी वजह से ही चल रही है। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर उसके उसे खुश होने का मौका देना, ये हर किसी की बात नहीं होती।
0: हाँ।
1: ये बहुत समझदार और सुलझे हुए जो लोग हैं, जिनको पता है कि किसी के चेहरे पे अगर हम मुस्कान लेकर आते हैं, तो वो अंदर से कितना अच्छा फील करेगा, उसे कितना अच्छा लगेगा।
0: हाँ बिल्कुल। प्राय ऐसे लोगों के हिस्से में हमेशा आलोचना आती है, फिर भी वे रुकते नहीं, क्योंकि उनके पास बुराई लेने का साहस होता है।
1: हाँ देखिए, बुराई हर किसी की होती है। बुराई तो पीठ पीछे कई लोगों की भी की जाती है, लेकिन बुराइयों से लड़कर जो जीतता है ना, वही सच्चा इंसान और साहसी इंसान कहलाता है
0: जी। और ऐसे व्यक्तित्व हमें अपने घर परिवार में ही मिल जाते हैं। वह पिता या पति जो परिवार के ताने सुनकर भी सबकी जरूरतों को के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं, है कि नहीं, वे भी उनका योगदान भी कम नहीं है।
1: हाँ बिल्कुल, परिवार में अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपको सही गलत की पहचान करा रहा है, उसके बाद भी अगर आप नहीं समझ पा रहे, फिर भी वो इंसान लगातार मेहनत कर रहा है, आपकी बुराइयों को अपना समझकर उसे सुधारने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे विरले इंसान परिवार में होते हैं। हर परिवार में एक इंसान आपको ऐसा मिलेगा ना,
0: बिल्कुल,
1: जो
0: बिल्कुल।
1: आगे आकर सब चीजों को समेटने का साहस रखता
0: जी,
1: है।
0: बिल्कुल सही कहा। और मतलब उन्हें एहसास होता है कि घर की सारी जिम्मेदारियां जो है हमारे कंधों पे हैं। और प्राय ऐसा देखने के लिए मिला जाता है जो घर के बड़े होते हैं, उन्हें इस चीज का एहसास जो है बहुत ही जल्दी हो जाता है।
1: हाँ, और घर कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जो बात घर के बड़े नहीं समझ पाते ना, घर के छोटे भी समझ जाते
0: जी,
1: हैं
0: जी।
1: कई जगहों पर आपने देखा होगा कि घर के जो छोटे होते हैं ना, वो जल्दी ही अपने उम्र से बड़े हो जाते हैं, वो सारी चीजों को समझने लगते हैं और बहुत चीजों में आगे बढ़ चढ़कर परिवार का साथ देते हैं। तो मतलब बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, जो अगर मिलजुल कर हम सभी हल करें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अगर कोई कुछ नहीं करता और एक इंसान आगे बढ़कर उसे समेटने का साहस करता है, तो उसका आत्मबल, मनोबल हमें जरूर बढ़ाना चाहिए।
0: जी बिल्कुल। तो बातों के साथ अपने श्रोताओं को सुनाते हैं प्यारा सा।
1: हाँ बिल्कुल, बहुत बातें हो गई हैं, श्रोताओं को इंतजार होगा कि एक खूबसूरत सा गीत वो इस कार्यक्रम में सुने।
0: जी बिल्कुल।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
4: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है। अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
3: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
5: कार्यक्रम जोहार रांची में आप सभी का पुनः स्वागत है।
6: और अमृता, अभी तुम आ रही थी तो देखा होगा तुमने, धूप बहुत तेज है।
5: बिल्कुल,
6: दो दिनों से गर्मी बढ़ गई है, लेकिन अभी जो अनुमान आया है, फोरकास्ट आया है, उसके अनुसार ना अभी मौसम बदलने वाला है।
5: ना बिल्कुल, लेकिन रांची का मौसम जो है वो कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये पहले जैसा हो गया है।
6: ऐसा नहीं है। हाँ। पहले जैसा नहीं है। पहले बहुत मौसम स्मूथ रहता था, जिस तरह से अभी आपने देखा होगा ना कि आंधियां चलती हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, बिजली गिरती है, मतलब अजीब सी बारिश हो रही है। पहले जब मौसम बदलता था उस समय बहुत कोई ऐसी डर वाली बात नहीं होती थी। अभी तो आपने ध्यान दिया होगा ना कि जैसे ही बादल काले आते हैं,
5: बिल्कुल,
6: बिजली इतनी तेज कड़कती है और कितनी जगह गिरती है, कितने लोगों की जानें चली जाती हैं। तो ये मौसम पहले जैसा नहीं है। हाँ। ये क्लाइमेट चेंज का असर है।
5: बिल्कुल, और पहले तो ऐसा नहीं था कि बारिश होती थी नॉर्मल तरीके से, लेकिन अभी तो ऐसा है कि आंधियां इतनी तेज चलती हैं कि लोगों के घर की छत तक उड़ जाते हैं, लोग उड़ जाते हैं। एकदम सही कहा आपने, कहीं बिजली के खंभे उड़ जाते हैं। और ये ऐसा नहीं कि एक बार हो रहा है, ये प्राय देखा जा रहा है कि आजकल मतलब प्राय रोज ही ऐसा हो रहा है।
6: और मौसम विभाग की माने ना तो उन्होंने मई के अंतिम सप्ताह तक ऐसा ही मौसम का अनुमान लगाया है, और 23 मई तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज हवा चलेगी, बारिश होगी, गर्जन के साथ वज्रपात भी हो सकता है। और आने वाले जो दो दिन है ना, अभी सुबह मैं समाचार सुन रही थी तो उसमें दो दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है।
5: तो हम अपने श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे कि इस मौसम में आप सतर्क रहें। अगर मौसम बदलता है और आप घर से बाहर रहते हैं तो आप किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं।
6: बिल्कुल, और कभी भी मौसम के साथ खिलवाड़ ना करें। बिजली गरज रही है तो जो भी पैमाना सेट किया गया है उससे आप बचकर रहे, उसका पालन करें, पेड़ के नीचे ना रहे, किसी ऐसी जगह पे ना रहे जहां बिजली गिरने का खतरा अधिक होता है। कोशिश करें सेफ और सुरक्षित रहें और खुश रहें।
5: जी बिल्कुल।

0: और अमृता, मौसम की बात कर ली और लोग अपने श्रोताओं से और भी बहुत सारी बातें कर ली।
1: जी
0: थोड़ी सी जानकारी देने का वक्त आ गया है और जानकारी में आज के दिन की बात कर लेते हैं, क्योंकि हर दिन अपने मतलब अपने इतिहास में कुछ चीज़ों को समेटे
1: खास होता
0: रखा
1: है।
0: है।
1: बिल्कुल, देश दुनिया के इतिहास में जो है 18 मई की तारीख बहुत सारी वजह से दर्ज है। वैसे इस दुनिया में हर तारीख को कुछ न कुछ अच्छा या बुरा होते रहता है ना? इसमें से कुछ घटनाएं वक्त के साथ भुला दी जाती हैं और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास में अपना नाम दर्ज कराती हैं। तो
0: और इतिहास में दर्ज इसलिए भी कराती हैं कि कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कुछ बुरी चीजें होती
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: अच्छी चीजों से सीख लेकर हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और बुरी चीजों को भूलने की कोशिश करना चाहिए और उससे भी सीख लेना
1: बिल्कुल
0: चाहिए
1: उससे भी
0: कि
1: सीख लेते हैं।
0: भविष्य में
1: हाँ
0: कोई वैसी दोबारा घटना ना
1: जी
0: हो। तो चलो जानकारी देते हैं आज के दिन क्या क्या हुआ
1: हाँ
0: था।
1: तो 1974 में 18 मई की तारीख एक ऐसी अहम घटना के साथ इतिहास में दर्ज है जिसने भारत को दुनिया के परमाणु संपन्न देशों के कतार में खड़ा कर दिया। भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। और साथ ही हम ये भी बता दें कि 1912 में पहली भारतीय फीचर लेंथ फिल्म

0: श्री पुंडलिक रिलीज हुई थी। और जानकारी दें कि राजस्थान में पंजीकृत निजी क्षेत्र में भारत के पुराने बैंकों में से एक बैंक ऑफ राजस्थान का आईसीआईसीआई में बैंक में विलय होना तय हो गया था। साथ ही 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1995 में संयुक्त राष्ट्र सहिष्णुता वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। और आपको बता दें श्रोताओं कि 1991 में चॉकलेट कंपनी में केमिस्ट के तौर पर काम करने वाली 27 वर्षीय हेलेन ने ब्रिटेन की पहली अंतरिक्ष यात्री के तौर पर सोवियत सोयुज यान से उड़ान भरी। उन्हें एक पहेली का जवाब देने पर यह मौका दिया।
1: और बात कर लेते हैं 2008 की, तो पार्श्व गायक नितिन मुकेश को मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया था
0: जी। और 2009 में श्रीलंका सरकार ने 25 साल से तमिल विद्रोहियों के साथ हो रही जंग के खत्म होने का ऐलान किया। सेना ने देश के उत्तरी हिस्से पर कब्जा किया और लिट्टे प्रमुख वेलुपिल्लई प्रभाकरन को मार गिराया।
1: और साथ ही बता दें कि 2008 में ही भारतीय मूल के लेखक इंदिरा सिन्हा को उनकी किताब एनिमल पीपल हेतु कॉमनवेल्थ

0: अमृता, हम बात कर रहे हैं आज के दिन की, इतिहास की जानकारी हमने दे दी और आज जो दिन है ना उसमें भी कुछ खास खास बातें हैं।
1: हाँ, बहुत सारे दिन हैं जो आज बहुत ही खास हैं। उनमें से एक है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, जो कि यह दिवस जो है दुनिया भर के संग्रहालयों के महत्व और संस्कृति के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।
0: हाँ बिल्कुल, और 18 मई 2026 को वर्ल्ड म्यूजियम डे जो है एक विभाजित विश्व को एकजुट करने वाले संग्रहालय विषय के तहत अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और भू राजनीतिक विभाजनों को पाटने, संवाद, समझ, समावेश और शांति को बढ़ावा देने में जो म्यूजियम होते हैं ना उनकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए किसी भी जगह के बारे में, किसी खास चीज के बारे में, तो प्रायः हर शहर में, हर जिले में, हर या इवन की आजकल तो गाँव में भी छोटे छोटे म्यूजियम देखने को मिलते हैं। म्यूजियम से इतनी सारी जानकारियां मिल जाती है ना कि उस फिर आपको उसके बारे में, उस जगह के बारे में जानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका उद्देश्य ही है कि जो म्यूजियम है, संग्रहालय है, उनकी क्षमता को नित्य प्रतिदिन बढ़ाते रहें ताकि हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती रहें और बहुत सारी जानकारियों को हम एक दूसरे के साथ साझा करते रहें।
1: बिल्कुल, इसीलिए कहा गया है कि किताब जो है वो ज्ञान का भंडार है।
0: और तो, किताबों की बात तो है ही, किताब के लिए लाइब्रेरी होती है, म्यूजियम जो है ना वो सहेज कर रखे जाते हैं कुछ चिन्हों को, प्रतीक चिन्हों को, जो बहुत आपने देखा होगा पुराने समय के सिक्के हो गए या महाराजा राजाओं की तलवारें हो गई, ढाल हो गए, मतलब बहुत सारी चीजें
1: इतिहास से जुड़ी हुई
0: दुर्लभ चीजें हैं जो आपको म्यूजियम में देखने को मिलती हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे यहाँ की चीजें दूसरे के म्यूजियम में भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो म्यूजियम का मतलब ही है, संग्रहालय का मतलब ही है कि उसकी क्षमता को नित्य प्रतिदिन हम बढ़ाते रहें, जो भी नई चीजें या जो भी पुरानी चीजें हमें जानकारी में आती हैं उसे सहेज कर संभाल कर रखने की जरूरत है ताकि हमारी पौराणिक धरोहर बनी रहे।
1: तो और साथ ही हम अपने श्रोताओं को ये भी बताएं कि आज ही जो है विश्व चिकित्सीय बागवानी दिवस भी है। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए बागवानी के चिकित्सीय लाभों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो हम सभी को पता है कि बागवानी एक ऐसा शौक है जो लोगों को मानसिक शांति भी देता है और आपको शारीरिक रूप से भी फिट बनाता है।
0: बिल्कुल, और बागवानी अगर आप करते हैं, देखो बहुत बृहद स्तर पर अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपके पास जो छोटी सी जगह ना उसमें ही कीजिए। इंडोर प्लांट लगाइए, आउटडोर प्लांट लगाइए, या आसपास में अगर आपका आपके पास जमीन है, घर है, तो उसके आसपास कोशिश करिए थोड़ी सी बागवानी करने की। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि जो पेड़ पौधे हो ना वो आपके तनाव को दूर करते हैं, आपके स्ट्रेस को कम करते हैं, उनके साथ बिताया गया पल आपको ऊर्जा से भर देता है।
1: और आपके घर के नीचे में अगर जगह नहीं है तो आप छत पे भी कुछ गमले रख
0: सकते हैं। आजकल बहुत सुविधाएं आ गई हैं, आप ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं, आप छोटे छोटे गमलों में लगा सकते हैं, आप पॉट में लगा सकते हैं। बागवानी करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास एकड़ में जमीन होनी चाहिए, जमीन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो छोटी छोटी जगह पे लगा,
1: फ्लैट में, बालकनी में भी एक अच्छा छोटा सा बागवानी तैयार कर देते
0: हैं। आजकल तो इंडोर प्लांट का इतना प्रचलन आ गया है कि प्रायः हर घर में आपको बहुत सारे पौधे देखने को मिलेंगे जो कि देखने में भी अच्छे लगते हैं, मन को सुकून भी देते हैं। और फिलहाल अभी सुकून के लिए एक अपने श्रोताओं को गीत सुनवाते हैं, फिर आगे की बात करेंगे।

0: और अमृता बात कर रहे हैं आज के दिन की, तो आज बेहद खास दिन है
1: जी,
0: जिसके बारे में जानना और जिसको मानना भी जरूरी है
1: जी।
0: आज है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, यानी HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस जो हर साल 18 मई को मनाया जाता है।
1: हाँ, बिल्कुल। इस दिन का मुख्य उद्देश्य HIV एड्स को रोकथाम के लिए एक सुरक्षित व प्रभावी वैक्सीन खोजने की आवश्यकता पर जोर देना है और वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य कर्मियों व स्वयं सेवकों के प्रयासों को सम्मानित करना भी है।
0: यह दिन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के 1997 के उस ऐतिहासिक भाषण से प्रेरित है जिसमें उन्होंने एक प्रभावी निवारक वैक्सीन के जरिए एड्स के खतरे को समाप्त करने का आह्वान किया था।
1: हाँ, पहला विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई 1998 को मनाया गया था। वर्तमान स्थिति, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी और अन्य बचाव उपायों ने HIV को नियंत्रित करने में बहुत मदद की है,
0: लेकिन आज भी इस महामारी को जड़ से खत्म करने के लिए एक वैक्सीन का विकास चिकित्सा जगत के लिए पहली बड़ी प्राथमिकता है। इसे कैसे किया जाए, किस तरह इसको लागू किया जाए और किस तरह ऐसी कारगर वैक्सीन बनाई जाए जिससे लोग इस महामारी से बच सके।
1: इस मौके पर जो है स्वास्थ्य संगठनों और समाज के स्तर पर कई वेबिनार, सेमिनार और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें निशुल्क जांच स्थानीय स्तर पर सरकारी ICTC केंद्रों में मुफ्त गोपनीय HIV को बढ़ावा दिया जाता है। होता क्या है ना कि लोग HIV से अगर पॉजिटिव हो भी जाते हैं ना, तो कई बार जागरूकता के अभाव में जानकारी नहीं, अपने जो मेडिकल परामर्श है वो लेते नहीं हैं, ना डॉक्टर के पास जाते हैं ना हॉस्पिटल में जाते हैं।
0: अभी भी लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां इस बीमारी को लेकर फैली हुई है और इसीलिए यह दिन मनाया जाता है और कोशिश ये की जा रही है कि कोई कारगर इलाज, कोई कारगर वैक्सीन इसमें और अच्छा डेवलप हो सके जिससे लोग इस बीमारी से बच सके। फिलहाल तो हम अपने श्रोताओं से इतना ही कहना चाहेंगे कि आज बदलती दौर में सबको सब चीज पता है क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में हर चीज पूरी खुली किताब है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि एड्स से जो बचने के उपाय सुझाए गए हैं उसका पालन जरूर करिए और कोशिश करिए कि इस बीमारी से कोई ग्रसित ना हो।
1: जी हाँ, जागरूक रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करिए।
0: बिल्कुल, कहा गया ना, जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, फिर कोई भी बीमारी आपको छू नहीं पाएगी और आप हंसते खेलते खिलखिलाते अपना जीवन जी पाएंगे।

0: अमृता, इतनी सारी बातें कर ली हमने और बहुत सारी चर्चा भी चल ली, थोड़ा मुझे लगता है तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम कहीं जाने की तैयारी में हो।
1: हाँ बिल्कुल, मेरा मूड तो हो रहा है कि अब जल्दी से अपना सामान पैक करें और कहीं चले जाएं। और
0: गर्मी की छुट्टी।
1: जी हाँ, गर्मी की छुट्टी, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टियां हो रही हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो फिर ये बहुत ही अच्छा मौका है मेरे लिए कि हम सारे परिवार मिलके कहीं अच्छे जगह पे चले जाएं।
0: अच्छा, ये आपके लिए नहीं है, बाकी लोग हर घर में यही प्लान अभी चल रहा होगा कि कौन कहाँ जाएगा।
1: जी,
0: किसी के पास समय बहुत नहीं है तो शॉर्ट टर्म के लिए भी, दो दिन के लिए भी कहीं जाना चाहेंगे बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे की जब छुट्टियां होती है ना बच्चों की, तो बच्चे परेशान करते हैं, घर पे रहेंगे, हमें घुमाने ले चलो। और कुछ ऐसी जगहें हैं जहां आप कितनी बार भी जाओ ना आपका मन नहीं भरेगा।
1: हाँ बिल्कुल, तो उन्हीं में से एक खास जगह है हिमालय की तलहटी में बसे ऋषिकेश का वातावरण और पर्यावरण अध्यात्म, योग और आराधना से की आभा से लबरेज। और यहीं पे स्थित है बीटल्स आश्रम, जिसे 84 कुटिया भी कहते हैं, और यहाँ के भित्ति चित्र और 84 ध्यान गुफाएं विशिष्ट हैं। दुनिया भर से स्वयं की खोज में लोग यहाँ आते हैं, जिनमें से कुछ तो यहीं के हो गए रह जाते हैं। वास्तव में ध्यान और योग की राजधानी है यह विशिष्ट जगह। इसे भारत की ही नहीं दुनिया की योग नगरी माना जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम माने जाने वाले मंदिरों की शहर ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर होने वाली संध्या आरती में शामिल होकर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभूति होती है।
0: और बताएं हम अपने श्रोताओं को अमृता, कि जो ऋषिकेश है ना, बेहद ही खूबसूरत सी जगह है
1: जी,
0: और बहुत ही सेफ जगह है। अभी तो बहुत भीड़ है, अभी चार धाम यात्रा की वजह से लोग बहुत जा रहे हैं, और ये जो समय है ना, ये जाने का बहुत अच्छा समय है। आप वहाँ पर जाइए, प्रकृति प्रेमियों के लिए तो यहाँ बहुत सारी जगह है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक झरने हैं, जिसमें नीरगढ़ का झरना, गरुड़ चट्टी और बहुत सारी खूबसूरत जगह है, जहाँ पे आप जाकर अपने कैमरे में, अपनी आंखों के कैमरे में उसे हमेशा के लिए कैद कर सकते हैं। और गंगा की जो धारा है ना ऋषिकेश में, कहा जाता है वो सबसे निर्मल धारा।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी के मौसम में नदी, झरनों और तालाबों का जो सानिध्य आराम आपको देता है, नीला पानी जहाँ जहाँ खेलता उछलता हुआ ऊंचाई से उतरता या बहता है, और हर उम्र के सैलानियों को रोक कर कहता है, उसका खिलखिलाता हुआ रंग, आवेग और मचलना आंखों में ऐसे समा जाता है जैसे आपको लगेगा कि आप किसी स्वर्ग में आ गए हैं।
0: बिल्कुल, और ऋषिकेश जब आप जाएंगे ना और वहाँ पे आप रहेंगे कुछ दिन ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि स्वयं को अभिभूत करने वाला निर्मल आनंद हमारे शरीर में प्रवेश कर गया है
1: जी।
0: और वहाँ मतलब बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, बहुत सारे आश्रम है, आप कम खर्च में भी वहाँ जाकर रह सकते हैं। और जो धार्मिक नगरी है और योग की नगरी है, मंदिरों की नगरी है, वहाँ आप आनंद उठा सकते हैं।
1: हाँ, साथ ही महाप्रसिद्ध लक्ष्मण झूला जो है पुराना हो जाने के कारण बंद कर दिया गया है, उसके पास बना 13 मंजिला त्रैकंबेश्वर मंदिर दूर से ही ध्यान खींच लेता है। लक्ष्मण झूला के पास ही नया सेतु बनाया जा रहा है। ऋषिकेश में टैक्सी के अतिरिक्त स्कूटर या बाइक भी किराए पर ले सकते हैं, जिससे आप पूरे शहर में भ्रमण कर सकते हैं।
0: क्योंकि बहुत बड़ी जगह नहीं है और आप घूम सकते हैं। लक्ष्मण झूला ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद है, गाड़ियों के लिए बंद है, लोग जाते हैं। उसके बगल में भी जो सेतु है वो भी बन गया है, तो वहाँ भी जाकर आप उसका आनंद उठा सकते हैं। तो और इस यहाँ पे जाने के लिए आपको हर चीज की सुविधा है, फ्लाइट है, ट्रेन है, बसेस हैं, आप पर्सनल गाड़ी से भी करके जा सकते हैं दिल्ली से आप, तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। बेहद खूबसूरत सी जगह, गंगा की गोद में बसा शहर, जरूर जाइए, घूम कर आइए। और जब घूमने जाए तो कुछ अच्छी यादें, कुछ अच्छे थॉट्स, कुछ अच्छी चीजें सीख कर आए और बच्चों को भी सिखाए और गर्मी छुट्टियों का आनंद उठाए।

0: देखो अमृता, इतना घुमा फिरा तुमने दिया है ना, घूमने जब जाते हैं तो हम बहुत सारी चीजें कुछ भी खा लेते हैं तो फिर भी खराब हो जाता है,
1: उसका सेहत पे जो है बुरा
0: असर पड़ता है। और अभी वैसे भी गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में ना पेट को ठंडा रखना जरूरी है।
1: तो गर्मी के मौसम में अगर बातें करें तो दही के स्वाद से हम सभी वाकिफ हैं। दही जो है सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है।
0: बिल्कुल। और दही की बात कर रहे हैं तो दही में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B6, B12 और राइबोफ्लेविन जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें पाए जाने वाले अच्छे बैक्टीरिया हमारी आंतों को स्वस्थ रखते हैं और पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं।
1: जिन लोगों को खाना खाने के बाद एसिडिटी, गैस या पेट में जलन की समस्या होती है, उन्हें भोजन के साथ या उसके बाद में एक कटोरा सादा दही जरूर लेना चाहिए।
0: दही के बहुत सारे गुण हैं अमृता। दही कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, इसे खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम होता है, इसके अलावा दांत और नाखून भी मजबूत बने रहते हैं। और पता है दही को बहुत तरीके से खा सकते हैं हम, दही प्लेन खा सकते हैं, दही नमक जीरे के साथ खा सकते हैं, दही रायता के साथ खा सकते हैं, दही छौंक लगाकर खा सकते हैं। तो दही खाने से यकीन करो कि हमारे शरीर को बहुत ही फायदे होते हैं।
1: दही में मौजूद जो है प्रोबायोटिक्स इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। गर्मियों में होने वाले पेट से संबंधी संक्रमण और फूड पॉइजनिंग की शिकायत को रोकने के लिए सहायक हो सकता है। हालांकि रात में अधिक मात्रा में दही खाने से कुछ लोगों को सर्दी जुकाम की परेशानी भी हो सकती है, इसलिए आप प्राय कोशिश करें कि दिन के वक्त ही दही खाएं।
0: बिल्कुल, दही आप कभी भी खाइए, रात में भी अगर खाते हैं ना तो ठंडी दही मत खाइए। दही में अगर नमक डालकर आप खाते हैं तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। और अभी गर्मी के मौसम में जो दही है, और दही जैसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको स्वस्थ रखेंगी, जैसे आप हमने शुरू में ही बात की थी कि मौसम बहुत अजीब सा बदल रहा है, बहुत गर्मी अचानक सा हो रही है, अगले दिन तुरंत शाम को बारिश होने लगती है, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ना गर्मी के मौसम में अपने खान पान का विशेष ख्याल रखना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहे। और दही ऐसी चीज है ना जो अगर दूध का सेवन नहीं करते हैं या बच्चे जो नहीं खाना चाहते हैं उन्हें दही की लस्सी आप बनाकर पिलाइए, वो जरूर पिएंगे। और दही की स्मूदी भी बनती है, वो भी बच्चे खा सकते हैं। तो दही से जुड़े अनेकों चीजें हैं जिनका प्रयोग करके आप गर्मी में या सालों भर, दही तो बहुत लोग सालों भर खाते हैं, बीच में एक दो महीने नहीं खाते हैं जिस समय उसमें फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, तो दही का इस्तेमाल नियमित करें, अपने स्किन को भी ग्लोइंग बनाकर रखें। और बहुत सारी बातें, जानकारी हमने अपने श्रोताओं को दे दी है अमृता। घड़ी की ओर देखो, घड़ी हमें जाने का इशारा भी कर रही है,
1: घड़ी अब इशारा कर रही है कि अब हमारी बातें जो है यहीं पे
0: खत्म होनी चाहिए। तो हम अपने श्रोताओं को इतना ही कहेंगे कि स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिए। और इस कार्यक्रम से सुनीता
1: और अमृता को दे इजाजत, आप सभी को
0: नमस्कार, जोहार। और सुनते हैं ये खूबसूरत संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहर रांची। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आपने ट्यून किया है FM 100.5 MHz पर। अब आपको सुनाते हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म कभी हाँ कभी ना के इस प्यारे से गीत के साथ। स्वर हैं सोनू निगम के, बोल हैं मजरू सुल्तानपुरी के और धुन बनाई है जतिन ललित ने। इस गीत को सुनना चाहा है भटिंडा रोड डबोवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग। और इसी गीत की फरमाइश आई है मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरुचरण ग्रोवर, रमेश मिगलानी की। तो इन सबों की फरमाइश पे आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।

0: एसपीसीआर आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
1: कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगली फरमाइश आई है बाबा बैजनाथ धाम से मनोज केसरी, पूजा केसरी, महादेव केसरी, श्रद्धानंद केसरी, रोशनी केसरी की, और इसी गीत को सुनना चाहा है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की अगली फरमाइश आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, चर डोंगरी पिपिरिया से दुर्गाराम साहू और गोंदा टाउन कांके रोड से रमेश प्रसाद जायसवाल, मनीदीप मंटू, मोनू सोनू आराध्या, ग्राम बगबूरवा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनमिका, उत्कर्ष नेताम। दोस्तों, ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म दिल तो पागल है के इस प्यारे से गीत को, जिसे गाया है उदित नारायण, लता मंगेशकर ने, संगीत दिया है उत्तम सिंह ने और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

दोस्तों कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म कल हो ना हो से। इस गीत को गाया है सोनू निगम ने और धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने। इस गीत को सुनना चाहा है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती ऊषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा निवेदा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्ला आसमा बेलदार। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी से। इस गीत को गाया है अभिजीत और अलका याग्निक ने, संगीत है जतिन ललित का और रचना जावेद अख्तर की है। इस गीत को सुनना चाहा है राजा बाजार भैया आरा से सुरेश केसरी, पूनम केसरी, प्रतीक केसरी, थाना रोड बक्सर से ओमानंद केसरी, धनानंद केसरी, विनोद केसरी। और इसी गीत को सुनना चाहा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लिवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू।

दोस्तों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं पे संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनैया सब श्रोता बहन मन के सुमन बहन बटले जोहार और वंदना बहन राउर को जोहार
1: जोहार सुमन दी और कार्यक्रम सुनवैया सब बहन मन के वंदना राय बटले जोहार और आसरा करीला कि हमार सब प्रिय श्रोता बहन मन खुशी और स्वस्थ होबे।
0: सही कहली बहन मन जे है से घर कर धूरी हुआ है ना, और जब भी मन स्वस्थ रह बाए हमरे स्वस्थ रह तबे सब बट से खुशी और स्वस्थ परिवार कर निर्माण भी वेला है नहीं। और जब गोटा परिवार खुश और झकझोर करके एकदम मस्त रहला तबे सब बेस रहला। सहेले महिला कर योगदान अपन घर और परिवार बटले सबसे खास और बकरा रहला।
1: एकदम सही कहली सुमन बहन। देखो नी एखन मौसम कर कखनो गरम हो जाते तो कखनो ठंडा हो जाते तो कखनो बरसात हो जाते, सेले ई बदलत मौसम में हमरे के विशेष सावधानी रखे कर दरकार है। ई बदलत मौसम में सर्दी खोखी जर और एलर्जी होवे कर बहुत खतरा बढ़ जाएला। और देखो नहीं अगर स्वस्थ रहे है तो हमरे मन के गुनगुना पानी के पिए के चाहिए, पौष्टिक आहार जेकर में विटामिन सी होवी से के जरूर लेवे के चाही, और अपन पूरा शरीर के ढाई के हमरे मन के रखे के चाही। और देखो नहीं बाहरे कर जे खाना हमरे मन खाई ला से वो कम खाई के चाही, घर कर खाना के हमरे मन के बगरा खाई के चाही। और ई मौसम में देखो डिहाइड्रेशन और लू कर कारण भी होवेला बहुत गर्म हो गेले, इसलिए हमरे मन के ऊपर से बाचे कर बहुत दरकार है। और सबसे पहले तो हमरे के लू से बाचे होवी ऊकर ले बिहान 11:30 बजे से लेके सांझ के 4 बजे तक हमरे मन के घर से निकले के नहीं चाहिए, काले कि से बेरा रोद बहुत बेसी होवेला। और देखो नी पानी कर प्यास नी लागल में भी उके पीते रहो तनी तनी देरी में, नींबू पानी होलक, नरियर कर पानी होलक, लस्सी चाहे छाछ और शिकंजी घर में बनाए के हमरे मन के जरूर पिए के चाहिए।
0: सही कहती। और देखो जब भी हमरे घर से बाहर निकले लनी तो हमरे के माथा ऊपरे टोपी चाहे कोई भी गमछा के ले चाहे स्कार्फ नियर कोनो के भी बांधू, और छाता के अपन संगे जरूर से राखू, और हल्का रंग कर जे ढीला सूती कर कपड़ा होवे सेखे पिंधे कर कोशिश करू। और जे बाहरे से जब भी घरे आऊ तो तुरंत पानी की नींब पिए के चाहिए, इन्हीं की धूप से आली और प्यास बहुत तेज है तो जल्दी जल्दी पानी के पिए थी, ऊकर से भी बहुत नुकसान होवे ना। और ना तो नहाय के चाहिए, पहले खुद के बैठो शांत हो और तनी कुन ठंडा करू शरीर के बदन के, ऊकर बाद नहाय के पानी मन कर सेवन करे के चाहिए। और देखो कि छानल गारल बगरा तेल मसाला ई सब कर प्रयोग नहीं करे के चाहिए इसन मौसम में खास करके। और जे भी खाए पिए के चीज है जेकर में कि पानी कर मात्रा ज्यादा रहलक जैसे कि तरबूज भेला खीरा ककड़ी मन है चाहे संतरा है और जैसन भी फल जे कि खुला में रखल है उके मत कहू काट के रखल, जैसे कि बहुत जगह देखल नहीं कि तरबूज मन काटल रहेला मन में, और उसे उन सब कर सेवन मत करू कभी भी। जब भी करू तो घर में काट के बढ़िया से स्वच्छ तरीका से काटू, साफ सुथरा तरीके से काटू धो और उकर बाद उकर सेवन करू। और साबुन और पानी से बार बार हाथ के धोवे के चाहिए। और एसी कर जिस टेम्परेचर है उके भी कम में राखू, और एसी से भी देखे कि तुरंत आदमी का करे कि एसी में कर रूम में रहते और तुरंत उकर से बाहर आवी तो उकर से भी सरद गर्म कर संभावना बहुत ज्यादा बढ़ेला, और ईसन में इन्फेक्शन कर भी खतरा ज्यादा बढ़ेला। तो ई सब कर हमरे के जरूर अपन ध्यान रखे के चाहिए अपन डेली कर दिनचर्या में।
1: बोलू तो एसी कर जो टेम्परेचर है से के अगर हमरे मन 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तक रखी ला तो हमरे कर स्वास्थ्य के हानि नहीं पहुंचाएला। और देखो हमरे रोद में अगर निकसत थी तो सनस्क्रीन कर उपयोग हमरे मन के जरूर करे के चाहिए। और वायरल इन्फेक्शन से बचे खातिर देखो भीड़ वाला जगह में हमरे मन के नहीं जाए के चाहिए। अगर जर मुड़ बत्था उल्टी या दस जैसन लक्षण दिशत है तो तुरंत डॉक्टर दिखाए के चाहिए। और लू कर खतरनाक लक्षण जैसे कि चक्कर आवे बेहोशी या त्वचा एकदम जे शुष्क हो जाएला
0: जलन तो होला
1: हाँ और जलन होवेला तो तुरंत हमरे मन के डॉक्टर दा जाए के चाहिए। तो ये सब करके हमरे मने बदलत जे मौसम है ओकर में सावधानी अपने के रख सकीला
0: और स्वस्थ रख सकीला अपन आपके है नी। तो चलो हमरे अपन कार्यक्रम में आगे बढ़ीला और एगो गीत के सुनीला, नागपुरी लोकगीत यशोदा देवी और संगी मनकर गावल।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: ये रहे विज्ञापन संदेश। इकर आगे हमरे सुन ली नागपुरी लोकगीत यशोदा देवी और संगी मनकर गावल।
3: तो चलो अब हमरे मन जानकारी करब कि आयु अनुकूल उपयुक्त आहार छुआ मनकर स्वास्थ्य कर आधार। इकर बारे हमरे के बताते विनीता शुक्ला और बातचीत करे हमरे कर सुमन बहिन।
4: बच्चों का स्वास्थ्य उनके भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है। स्वस्थ बच्चा ही आगे चलकर स्वस्थ और सफल नागरिक बनता है। बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आयु के अनुसार सही और संतुलित आहार मिले और हर उम्र के बच्चे की शारीरिक और मानसिक जरूरतें अलग अलग होती है। इसके लिए उनके भोजन में भी बदलाव होना जरूरी है। बच्चों को उनकी आयु के अनुसार पौष्टिक भोजन दिया जाता है जो उनको शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, जिससे उनकी बौद्धिक क्षमता, दिमाग तेज होना और बीमारियों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है। छोटे बच्चे के लिए माँ का दूध सबसे उत्तम आहार माना जाता है और जन्म से 6 महीने तक के बच्चे केवल माँ के दूध पर निर्भर होते हैं। इसमें सभी जरूरी पोषक तत्व हैं जो बच्चे के विकास में मदद भी करता है। 6 महीने के बाद बच्चे धीरे धीरे दाल का पानी, खिचड़ी, फल, सब्जी, सूप, हल्का भोजन लेना शुरू करता है। भोजन में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम और आयरन की मात्रा बहुत संतुलित मात्रा में होनी चाहिए। स्कूल जाने वाले बच्चों को दूध, अंडा, दाल, हरी सब्जियां, फल, अनाज नियमित रूप से देना चाहिए। इसके उनकी पढ़ाई में ध्यान बढ़ता है और शरीर को ऊर्जा मिलती है। आयु के अनुसार सही और पौष्टिक भोजन बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। स्वास्थ्य बच्चे ही देश के उज्जवल भविष्य बनते हैं, इसलिए हर माता पिता और समाज का कर्तव्य है कि बच्चों को सही आहार और अच्छा वातावरण मिले। आइए आज इस विषय पे हम बात करते हैं विनीता जी से। विनीता जी नमस्कार।
5: नमस्कार
4: विनीता जी, बच्चों के लिए सही आहार का क्या महत्व है, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे?
5: सही आहार ऐसे तो बच्चों के शरीर के विकास के लिए काफी जरूरी होता है। भोजन से बच्चों को ऊर्जा मिलती है और यही ऊर्जा उन्हें खेलने, पढ़ने या फिर सीखने में मदद करती है। यदि बच्चों को सही भोजन न मिले तो फिर उनका शरीर कमजोर हो सकता है और उनकी मानसिक विकास काफी प्रभावित हो सकती है। इससे एक संतुलित आहार जिसमें कि काफी, जिसके कि हम बैलेंस डाइट भी बोलते हैं, जिसमें कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, जिंक, पानी, मिनरल्स, ये सभी चीजें सही मात्रा में होनी चाहिए। ये सभी पोषक तत्व शरीर में अलग अलग कार्यों में मदद करते हैं। प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करता है। दूध, दाल, अंडा, पनीर, सोयाबीन, ये सब में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम विटामिन डी का काफी अच्छा सोर्स होता है और ये हड्डियों को मजबूत करता है और साथ ही साथ दांतों को भी मजबूत करता है। विटामिन शरीर में बीमारियों को आने नहीं देता है और उनसे बचाता है। आयरन शरीर में खून बढ़ाने में काम करता है। यदि बच्चों को समय पर पौष्टिक भोजन मिले तो वे अधिक सक्रिय रहते हैं और पढ़ाई में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मानसिक का विकास होता है।
4: जन्म से लेकर 6 महीने तक के बच्चे का आहार कैसा होना चाहिए?
5: ऐसे तो जन्म के बाद बच्चे के लिए सबसे पहला और सबसे अच्छा भोजन माँ का दूध होता है। डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि जन्म के 6 महीने तक बच्चों को केवल माँ का ही दूध देना चाहिए। माँ के दूध में सभी जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो कि बच्चों को बीमारियों से बचाते हैं और जैसे कि कोई भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। माँ का दूध आसानी से पच जाता है और इससे बच्चे की सही मात्रा में पोषण मिलता है। छोटे बच्चों का जो पेट होता है वह काफी नाजुक होता है, इसलिए उन्हें जो बाहर का दूध या फिर भारी भोजन उन लोगों को नहीं देना चाहिए। कई बार लोग छोटे बच्चों को शहद, पानी या गाय के दूध देने लगते हैं, लेकिन यह सही नहीं माना जाता है। फिर जैसे जैसे वो बच्चा 6 महीने से अधिक का होने लगता है, वैसे उसे दाल का पानी, खिचड़ी, दलिया या फसला हुआ केला, उबले हुए आलू, सब्जियां, सूप आदि, ये सब धीरे धीरे बच्चों को अलग अलग स्वाद और भोजन की आदत डलवानी चाहिए। इस उम्र में बच्चे तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए उन्हें अधिक पोषण की जरूरत होती है। यदि इस समय सही भोजन ना मिले तो बच्चा कमजोर हो सकता है और कई बच्चे में कुपोषण की समस्या इसी उम्र में शुरू होती है। पर जब बच्चे जो बड़े हो जाते हैं और वे जब स्कूल जाना शुरू करते हैं तो फिर उनमें अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। वे पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, निजी चीजें सीखते हैं और इसलिए उनके भोजन में सभी जरूरी पोषक तत्व होने चाहिए। सुबह का नाश्ता बहुत जरूरी होता है। जो बच्चे बिना नाश्ता किए स्कूल जाते हैं वे जल्दी थक जाते हैं और पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते हैं। बच्चों को सुबह दूध, फल, अंडा, पराठा, दलिया या पोहा जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ देने चाहिए।
6: जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर किशोरावस्था आती है, तो क्या उस समय भी फिर परिवर्तन करना पड़ता है बच्चों के डाइट में, उनके खान पान में?
5: जी बिल्कुल सही कहा आपने। किशोरावस्था जो होती है वे बच्चों के जीवन का काफी महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय शरीर तेजी से बढ़ता है और मानसिक बदलाव भी आते हैं। लड़के और लड़कियों दोनों को इस समय पौष्टिक भोजन की अधिक जरूरत होती है। इस उम्र में आयरन और कैल्शियम बहुत जरूरी होते हैं। लड़कियों में खून की कमी समस्या अधिक देखी जाती है, इसलिए उन्हें हरी सब्जियां, फल, दूध, आयरन ये सब से भरा हुआ ये सब भोजन लेना चाहिए। किशोर बच्चों को फास्ट फूड खाने की आदत जल्दी लग जाती है। कई बच्चे वजन कम करने के लिए खाना कम कर देते हैं जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। सही भोजन शरीर को मजबूत बनाता है और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। तुलित आहार ऐसे तो काफी जरूरी होते हैं जीवन में, जिसमें कि वे सारे भोजन आते हैं जिसमें शरीर की जरूरतें सारी जरूरतें जिसमें कि सभी पोषक तत्व सही मात्रा में हो। केवल पेट भर लेना पर्याप्त नहीं होता है, भोजन ऐसा होना चाहिए जिससे कि शरीर को पूरी शक्ति मिले। संतुलित आहार में अनाज, दाल, दूध, फल, सब्जियां, पानी ये सब कुछ शामिल होना चाहिए। हर रंग की सब्जियां और फल शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। यदि भोजन में केवल एक ही चीज ज्यादा है और बाकी चीजों की कमी है तो शरीर कमजोर हो सकता है, इसलिए भोजन में विविधता होनी चाहिए।
6: तो हम ये कह सकते हैं कि आयु के अनुकूल उपयुक्त आहार बहुत महत्वपूर्ण है ना?
4: जी
6: विनीता जी, इस विषय पे आप क्या बताएंगे?
5: ऐसा तो देखा गया है कि ये आयु अनुकूल उपयुक्त आहार, इसका मतलब होता है कि बच्चे जो हैं उनकी उम्र के अनुसार सही भोजन दिया जाए। हर उम्र में ऐसे तो शरीर की जो जरूरतें होती हैं वे अलग अलग होती हैं। छोटे बच्चों को हल्का और आसानी से पचने वाला जो भोजन होता है वो सब देना पड़ता है, जिसमें कि दलिया आ जाता है या फिर, जबकि बड़े बच्चों को अधिक ऊर्जा और पोषण की जरूरत होती है। सही आहार बच्चों के शरीर को मजबूत बनाता है और मानसिक विकास में भी मदद करता है। इससे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और वे जल्दी बीमार नहीं पड़ते। यदि बच्चों को सही भोजन न मिले तो उनका विकास रुक सकता है, इसलिए आयु के अनुसार भोजन देना बहुत जरूरी है।
6: व्यायाम और सही आहार ये दोनों शारीरिक रूप से मजबूत बनने के लिए आवश्यक है, इस विषय पे क्या बात होती है?
5: अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए सही भोजन और व्यायाम दोनों जरूरी है। यदि बच्चे पौष्टिक भोजन खाएं और नियमित खेल कूद करें तो उनका शरीर स्वस्थ रहता है। व्यायाम से शरीर मजबूत बनता है और मन प्रसन्न रहता है। आजकल बच्चे मोबाइल में ज्यादा समय बिताते हैं, इसलिए उन्हें खेल कूद ये सब के लिए समय नहीं मिलता है। और लोगों को, उनके माता पिता को खास करके बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि वे व्यायाम करें और खेल कूद जो कि आउटडोर एक्टिविटीज हो गई उनमें पार्टिसिपेट करें। बच्चे देश के भविष्य होते हैं, यदि बच्चे स्वस्थ होंगे तभी वे पढ़ लिख कर देश की प्रगति में योगदान देंगे। स्वस्थ बच्चे ही मजबूत समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं, इसलिए बच्चों के स्वास्थ्य और भोजन पर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। फल और सब्जियां बच्चों के शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। इनमें विटामिन, मिनरल, फाइबर ये सब पाए जाते हैं जो कि शरीर को स्वस्थ रखते हैं।

0: हरी सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, लौकी शरीर में खून बढ़ाने में मदद करती है। गाजर जिसमें कि विटामिन ए काफी ज्यादा होता है वो आंखों के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। फलों में प्राकृतिक मिठास होती है जो बच्चों को ऊर्जा देती है। केला, सेब, संतरा, पपीता या फिर ये सब जितने भी फ्रूट्स होते हैं ये सब बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। रोज फल खाने से बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आजकल कई बच्चे फल और सब्जियां खाने से बचते हैं। माता पिता को बच्चों को अलग अलग तरीके के फल और सब्जियां खिलानी चाहिए ताकि उन्हें खाने में रुचि हो।
1: यानी भी हम जितना ध्यान देते हैं उन्हें पानी पीने की ओर भी प्रेरित करना चाहिए जिससे कि वो बिल्कुल हाइड्रेट रहे, है ना। तो पानी का भी महत्व हमारे संतुलित शरीर को रखने के लिए जरूरी होता है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, पानी हमारे जीवन के लिए ऐसे तो काफी जरूरी होता है। बच्चों के शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा होनी काफी जरूरी है। पानी शरीर को ठंडा रखता है और शरीर से गंदगी बाहर निकालता है। यदि बच्चे कम पानी पीते हैं तो उन्हें कमजोरी, थकान और पेट की समस्या हो सकती है। इसलिए बच्चों को साफ और उबला हुआ पानी पीने की आदत डालनी चाहिए। गर्मी में के मौसम में बच्चों को अधिक पानी पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक की जगह नींबू पानी या फिर नारियल पानी, ये सब घर पे बना हुआ शरबत, ये सब ज्यादा लाभदायक होता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। विनीता जी, आपने संतुलित आहार के विषय में इतनी अच्छी बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी धन्यवाद।
2: हाँ तो सुनो या बहिन मन, एकन हमारे मन जानकारी कर ली कि आयु अनुकूल उपयुक्त आहार बच्चों के स्वास्थ्य का आधार, और उकर बारे में हमरे के बतात रहे विनीता शुक्ला और बातचीत कर रहे हैं हमरे कर सुमन बहिन। तो चलो और एक और नागपुरी लोकगीत हमरे मन सुन लेवीला, रूना देवी और संगी मन कर गावल।

0: ई रहे नागपुरी लोकगीत रूना देवी और संगी मनकर गावल।
1: तो चलो अब हमरे मन जानकारी करब कि ये गर्मी कर मौसम है उकर में छोट छुआ मनकर खान पान के हमरे मन के कैसे ध्यान देवे के चाहिए। देखो नी गर्मी में जो है छुआ मनकर जो मुख्य उद्देश्य है खान पान कर वो मन के डिहाइड्रेशन यानी कि पानी कर कमी और पेट कर समस्या से बचाई के मन कर। देखो जो खाना है उकर में हमरे मन के तरल पदार्थ कर मात्रा जरूर बढ़ाई के चाहिए और मौसमी फल और सब्जी के हमरे

0: मन के जरूर शामिल करके चाहिए। सही कहली वंदा बहन, गर्मी कर मौसम में छुआ मन के स्वस्थ और खास करके एकदम ऊर्जावान रहे, जेकर से मन है ऐसा डाइट के हमरे के अपन में शामिल करे के चाहिए। और हाइड्रेशन और जो पेय पदार्थ मन है उपकर में हमरे जैसे के कहबे कर ली कि नारियल कर पानी भेलक, नींबू पानी है, छाछ है, चीनी से जो भरल बाजार में जूस मन है से के ना दे
1: एकदम
0: अपन घर में
1: डब्बा बन जो जूस हुए
0: प्रयोग मत करू छुआ मन ले। घर में खुद से फ्रेश जूस बना लू और उकर सेवन करे ले बच्चा मन के दे, तो उकर में चीनी कर मात्रा के हमरे अपन हिसाब से राख सके।
1: चीनी नहीं देले भी चली
0: काले की उकर जे अपन जे प्राकृतिक रूप से उकर मिठास है से है हमरे लेकिन बेहतर रहे।
1: देखो स्मूदी जे होवेला से तो बहुत बढ़िया से घर में बन जाला, मन दे सकीला। और देखो एखन तो बहुत बढ़िया बढ़िया फल मन मिलत है, जैसे की तरबूज होलक, खरबूजा, संतरा, पपीता, जे पानी से भरल फल मन
0: है
1: से मन के जरूर छुआ मन के देवे के चाहिए, जेकर से की मन के पानी कर कमी नहीं होवी। और देखो दही जो होवेला से पेट के ठंडा रखेला और पाचन कर क्रिया के हम मजबूत रखेला, सेले हमरे मन के अपन छुआ के सादा दही, लस्सी या खीरा कर जे रायता होवेला से हमरे मन दे सकीला।
0: मट्ठा के रूप में भी जरूर प्रयोग करे के चाहिए, बहुत ज्यादा फायदेमंद है मट्ठा भी है नहीं सेहत ले।
1: तो बहन मन तो अगर घर में छोट छुआ है तो रौरे मन ये सब खाना दे के मन के बढ़िया से राख सकीला गर्म कर मौसम में।
0: सही कहली।
1: तो सुमन बहन आप तो हमरे कर जाय कर बेरा होते, तो अगला सोमवार के बहन मन कर संगे हमरे मन फिर से गोठियाब, तब तक खातिर देव विदा।
0: जोहार।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
0: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
2: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
0: श्रोताओं, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
2: जी।
0: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
0: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
2: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
0: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
0: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
0: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना।

0: अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
1: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
0: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी, आपको साधुवाद।
1: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
0: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है।
1: जी, और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं?
0: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं।
1: जी,
0: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है?
0: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
1: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है?
0: तो साथियों इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
1: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं?
0: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
1: जी विमरेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओं अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
1: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
3: आई एम फाइन।
4: आई एम गुड सर।
2: फाइन, गुड, ओके, सो टेल मी, what do you like most?
4: I like playing, sir.
5: I like painting, sir.
2: Very good. Anyone else?
6: Sir, I like singing.
7: I like playing with my pets.
2: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
8: Yes, sir.
9: We like.
2: Lovely butterflies?
8: Yes, sir.
2: And lovely colorful chirping birds?
8: Yes, sir. We like.
2: That's very nice, children.
10: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
2: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
8: Yes, sir.
2: The rivers, the mountains, and the green trees.
8: Yes, sir.
2: Okay. So let me tell you the story of a sweet child like you.
8: Like us?
2: Would you like to listen?
8: Yes.
2: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
8: Okay, sir.
2: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me. Okay?
8: Okay, sir. We love you.
2: As I lie on my back,
8: as I lie on my back,
2: looking up at the sky,
8: looking up at the sky,
2: I see

0: नंगे पांव धोती नुमा पारंपरिक कपड़े आदिवासी गहने पहनी
1: तुलसी गौडा 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती
2: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौडा
0: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौडा
3: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है।
4: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
5: श्रीमती तुलसी गौड़ा समाज सेवा पर्यावरण।
4: यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। देश भर में प्रसन्नता की लहर।
6: आज नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों में करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
3: अच्छा,
2: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया। तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ,
3: अरे ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
2: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
3: बिल्कुल होता है।
2: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से पढ़ते हैं।
3: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
2: है ना
3: जी।
2: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
3: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
2: बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
0: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
2: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
0: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
1: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
0: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
4: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
2: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
4: अच्छा।
2: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
4: अच्छा।
2: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
4: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
2: बिल्कुल सही सुना है आपने। मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
4: अच्छा।
2: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
4: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
2: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हों तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं, समझे
4: जी? ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
2: हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है, ठीक है ना?
4: तुलसी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज, एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत धन्यवाद।
0: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
1: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुलसी गौड़ा और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
8: दोस्तों अभी आपने सुना NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए आपको ले चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन पाएंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पी के कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद गृहमंत्री बस्तर के लिए रवाना हो गए, जहां वे नेतानार गांव में सीआरपीएफ कैंप परिसर में स्थापित जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या

0: हुआ। प्रधानमंत्री ने इस हादसे में हुई जानमाल की घोषणा की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 133 अंक की गिरावट के साथ 75,105, निफ्टी 60 अंक लुढ़क कर 23,584 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has left for Norway after concluding his two-day visit to Sweden today. Mr. Modi, in a social media post, said his visit to Sweden was marked by several important outcomes that will add new momentum to bilateral relations. He said from elevating their bilateral ties to a strategic partnership, launching the Joint Innovation Partnership 2.0 and the India-Sweden Technology and Artificial Intelligence Corridor to setting an ambitious goal of doubling bilateral trade in the next 5 years, the discussions were highly productive. He thanked the people of Sweden, the government of Sweden and Prime Minister Ulf Kristersson for the warmth and friendship. Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Sweden reports that elevation of bilateral ties to the level of a strategic partnership is guided by the India-Sweden Joint Action Plan 2026-2030. The comprehensive roadmap aims to double bilateral economic exchange within the next 5 years and deepen cooperation under the Make in India and Made with Sweden initiatives, particularly in areas such as green hydrogen, semiconductors and advanced manufacturing. A defining moment of the visit was the conferment of the Royal Order of the Polar Star upon the Prime Minister, Sweden's highest honour for foreign heads of government, symbolising the deepening civilizational and democratic bonds between the two nations. Defence Minister Rajnath Singh departed on a two-nation visit to Vietnam and South Korea today. In a social media post, he said the visit will further expand the scope of the country's engagement with both nations. He added that the visit will focus on deepening strategic military cooperation, strengthening defence industrial partnerships, and boosting maritime collaboration in the Indo-Pacific region. During his visit to Vietnam, Rajnath Singh will hold bilateral talks with Minister of National Defence of Vietnam, General Phan Van Giang. Mr. Singh's visit also coincides with the 136th birth anniversary of former President of Vietnam Ho Chi Minh on the 19th of May. Union Home Minister Amit Shah today flagged off 400 next-gen Dial 112 vehicles in Raipur. Chief Minister Vishnu Deo Sai, State Assembly Speaker Raman Singh and Deputy Chief Minister Vijay Sharma were also present on the occasion. So far, the Dial 112 service was available in only 16 districts of Chhattisgarh. The state government has now expanded the service to all 33 districts. In Keralam, the new UDF ministry headed by senior Congress leader V.D. Satheeshan was sworn in today at Thiruvananthapuram. Governor Rajendra Vishwanath Arlekar administered the oath to the new ministers.
2: Yana Vadasheri Damodara Menon Satheeshan Yenanyan Niyamam Vali Stabidamaya Bharatathinte Bharanaghadanayodu Nirvyajamaya Vishwasthathayum.
1: Former opposition leader and former KPCC President Ramesh Chennithala, present KPCC President Sunny Joseph, former KPCC President K. Muralidharan and IUML leader P.K. Kunyalikutty are among the senior leaders in the new ministry. Prime Minister Narendra Modi has congratulated V.D. Satheeshan on taking oaths as the Chief Minister of Kerala. In a social media post, Mr. Modi said the central government will assure all possible support for the newly formed Kerala government in fulfilling the aspirations of the people. A vessel carrying 20,000 metric tons of liquefied petroleum gas, LPG, has arrived at Deen Dayal Port Authority in Kandla in Gujarat after crossing the Strait of Hormuz amid the West Asia crisis. The Marshall Islands flagged MV Semi started its journey from Qatar and docked at the port in Kandla on Saturday. Since early March, 13 India-flagged vessels comprising 12 LPG tankers and one crude oil tanker have crossed the Strait of Hormuz. In a landmark decision, the Shubhendu Adhikari-led BJP government in West Bengal has raised the upper age limit for entry into state government jobs. The upper age limit for recruitment to Group A posts has now been set at 41 years. For Group B posts, the limit has been raised to 44 years. And for Group C and Group D posts, the maximum age is now 45 years. The government clarified that where higher age limits are already in place, the existing rules will continue. And with that, we end this news bulletin.
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी को मिला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा का बताया प्रतीक, कहा देशवासियों के लिए गर्व का विषय। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी। रांची में प्रगतिशील किसानों को किया सम्मानित। खूंटी में पुल निर्माण साइट पर फायरिंग और लूट की घटना, मजदूर के साहस से बाइक छोड़ अपराधी फरार, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। गुमला लोहरदगा समेत कई जिलों में अगले कुछ घंटों में मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा की संभावना। रांची समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन द्वारा रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया जाना प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व और गौरव का विषय है। यह सम्मान न केवल प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक स्तर पर उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व का प्रतीक है, बल्कि विश्व मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और सशक्त उपस्थिति को भी दर्शाता है। केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि प्रधानमंत्री को प्राप्त यह 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान देशवासियों के लिए प्रेरणादायी है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने शहरवासियों की सुविधा के लिए रांची के 5 प्रमुख चौराहों पर वाटरप्रूफ ट्रैफिक शेड लगाने की योजना बनाई है। पहले चरण में अरगोड़ा चौक, सरना चौक, सहजानंद चौक, लालपुर चौक और करमटोली चौक पर आधुनिक डिजाइन के मजबूत स्टील फ्रेम और वाटरप्रूफ सामग्री से बने शेड लगाए जाएंगे। प्रशासनिक स्वीकृति मिलते ही इस योजना पर काम शुरू होगा और सफलता के बाद इसे शहर के अन्य व्यस्त चौराहों पर भी विस्तार किया जाएगा। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची के बेड़ों में किसान सम्मान समारोह में कहा कि किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और ट्रैक्टर, कृषि यंत्र, स्प्रेयर समेत अन्य उपकरण अनुदान पर दिए जा रहे हैं। मौके पर मंत्री ने मत्स्य पालन और केस फार्मिंग को बढ़ावा देने के साथ साथ ग्रामीण बाजारों को सशक्त बनाने और कोल्ड स्टोरेज निर्माण की बात भी कही। कम वर्षा की संभावना को देखते हुए उन्होंने किसानों से धान के साथ साथ मोटे अनाज और कम पानी वाली फसलों की खेती पर ध्यान देने की अपील की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 27 अप्रैल 2026 को मंजूर की गई झारखंड अनाधिकृत रूप

0: से निर्मित भवन नियमितीकरण नियम 2026 को टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने आम जनता के लिए काफी लाभकारी बताया है। धनबाद में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि वर्षों से लोग भवन नियमितीकरण की समस्या से परेशान थे, जिसे राज्य सरकार ने दूर करने का प्रयास किया है।
1: जो भवन बन के तैयार था क्षेत्र में, जिसका किसी तरह का उपयोग या नहीं कोई कानून नीति बना, वैसे लोगों को यह बताया गया है कि कम से कम वैसे लोगों को 2 महीने के अंदर अप्लाई अगर करेंगे तो उसको अस्थायीकरण का भी मान्यता उसको दिया जाएगा और उसका जो सरकारी राशि है उसको दिया जाएगा, उसको वैध माना जाएगा।
0: रांची जिला प्रशासन ने संवेदनशील कार्रवाई करते हुए 85 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक राधेश्याम नाथ को 24 घंटे के भीतर सर्वजन पेंशन योजना और आयुष्मान कार्ड का लाभ उपलब्ध कराया। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर समाहरणालय की टीम ने बुजुर्ग के घर जाकर पेंशन स्वीकृति प्रमाण पत्र और आयुष्मान कार्ड सौंपा, जिससे उन्हें स्वास्थ्य और आर्थिक सहायता तुरंत मिल सके। लाभ मिलने पर राधेश्याम नाथ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जिला प्रशासन का आभार जताया।
2: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सौजन्य से मुझे 12 घंटा के अंदर कार्ड आयुष्मान कार्ड तथा अन्य कार्ड पेंशन प्राप्त हुआ। हम उनको तहे दिल से अपना धन्यवाद देते हैं।
0: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया में चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा है कि यह दावा फर्जी है। भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन पूल साइट पर फायरिंग और लूट की घटना सामने आई है। पुलिस ने मौके से अपराधियों द्वारा छोड़ी गई बाइक बरामद की है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जानकारी के अनुसार एक बाइक से पहुंचे 3 अपराधियों ने मजदूरों के साथ मारपीट कर करीब 1 दर्जन मोबाइल फोन लूट लिए और दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग की। इस बीच मजदूरों का विरोध देख बदमाश घबरा कर अपनी बाइक मौके पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस का दावा है कि मामले में शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चतरा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाते हुए गिद्धौर थाना क्षेत्र से एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। SP अनिमेश नथानी ने बताया कि उसके पास से करीब 4 किलो अफीम बरामद हुई।
3: सत्यापन में एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा और उसके पास से 2 थैला में सेमी लिक्विड पदार्थ अफीम जैसा बरामद हुआ, जिसकी हम लोगों द्वारा टेस्टिंग की गई तो पाया गया कि 3 किलो 972 ग्राम अफीम उसमें बरामद हुआ है। साथ ही 2 किलो गुड़ भी अलग से थैले में एक बरामद हुआ है, जिसको जब्त किया गया।
0: साहिबगंज जिले में 300 चोरी या गुम मोबाइल को उनके मालिकों को सौंपा गया। सिद्धो कानू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को पौधा देकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने कहा कि मोबाइल चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के साथ साथ इस तरह की घटनाओं में शामिल युवाओं को रोजगार से जोड़ने की भी पहल की जाएगी।
4: पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने समेकित एक कार्य योजना बनाकर उस पर काम कर रहे हैं। एक पक्ष है उसको कि ऐसे सब लोग जो इस सामने शामिल है उनको तो रोजगार के अन्य अवसरों मुख्य धारा से जोड़ा जाए ताकि वो इस तरह के कार्यों में सम्मिलित न हो। दूसरा पहलू है कि जो लोग इसके बाद भी जो हम लोग मौका दे रहे हैं उसके बाद भी इस कार्य में लिप्त रहे, इस गलत कार्य में, उसको पकड़ा जाए, परेश किया जाए। इसी अभियान के तहत हम लोगों ने 300 मोबाइल रिकवर किया है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 0.5% की गिरावट दर्ज की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 321 अंक गिरकर 74,917 जबकि निफ्टी 113 अंक लुढ़क कर 23,530 पर था। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,46,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है।

दोस्तों अभी आपने सुना कार्यक्रम अनुरंजनी, कलाकार थी अनीता सेन, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं सोनू निगम।

मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिस

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार थे सोनू निगम। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार बस कुछ ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा एआई गलियारे की शुरूआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
2: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी

0: चीज में संयोग के लिए एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी संयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी LEADIT के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
2: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम वी स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याजमाय विश्वस्तयुम।
1: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने UDF सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता PK कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने VD सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रूपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग OBC आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच 4

0: बाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
1: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृतकाल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्लीवासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
2: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ मन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
3: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार

0: रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर ये प्रसारण आप आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे हैं। दोस्तों, अब वक्त हो चला है हमारे फौजी भाइयों के कार्यक्रम जय भारती का। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म LOC के इस प्यारे से गीत के साथ। स्वर है अलका याग्निक के और साथियों के। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं अनु मलिक।

काबिल तारीफ है। भारतीय सेना के सैनिक देशभक्ति की सच्ची मिसाल हैं, जो कि अपने प्राण त्याग कर भी देश की रक्षा करते हैं। भारतीय सेना मौका आने पर दुश्मन के ईंट से ईंट बजा देते हैं, वो अपने अंतिम क्षणों तक डटकर खड़े रहते हैं। भारतीय सैनिक गर्मी हो या सर्दी, बिना मौसम की परवाह किए देशवासियों की रक्षा करते हैं।

दोस्तों भारतीय सेना तीन प्रकार की है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। भारतीय सेना आज के समय में विश्व के तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी सेना है। भारतीय सैनिक बहुत ही बहादुर होते हैं, जिस कारण वह तकनीकी हथियारों के अभाव में भी हर मुसीबत से लड़ जाते हैं। भारतीय सेना की हर जीत के पीछे उनका अनुशासन है और उनकी सूझबूझ। भारतीय सेना के सैनिकों का जीवन बहुत ही पीड़ादायक होता है, क्योंकि देश के लिए उन्हें अपने परिवार वालों से दूर रहना पड़ता है। उनके घर वाले भी हर समय उनकी सलामती की दुआ करते हैं और अपने जवान बेटों को मातृभूमि के प्रति उनका कर्तव्य निभाने के लिए सरहद पर भेज देते हैं।

दोस्तों, भारतीय सेना सिर्फ सीमा पर रहकर ही देश की रक्षा नहीं करते, बल्कि जब देश के भीतर कोई मुश्किल आती है तो वो वहाँ पर भी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। जब जब देश में बाढ़ आती है तब वायुसेना के लोगों की सहायता करती है और उन तक भोजन पहुँचाती है। जब जब दुश्मनों ने देश पर हमला किया, भारतीय सेना ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम जय भारती यहीं पे संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में एक समारोह में सहायक आचार्यों तथा महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि इससे राज्य के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था और मजबूत होगी। समारोह में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव भी मौजूद रहे।
2: नवनियुक्त हुए हैं, सरकार के अंग के रूप में आप काम करेंगे। यह चार महीने में ही शिक्षा विभाग में लगभग 9000 से अधिक लोगों की नियुक्ति हुई। विगत दो साल के अंदर हम लोगों ने लगभग 15-16 हजार लोगों की नियुक्तियां की और ये अनवरत जारी भी, अभी और भी तैयारी हो रही है। लगता है कि 2-3-4 महीने में और भी हजारों लोगों की नियुक्तियां होंगी, तो आज ये 300 आदमी हजारों के बराबर।
1: दुमका में बिजली और पानी का संकट गहरा गया है। इसके विरोध में भाजपा नेत्री सीता सोरेन ई रिक्शा से समाहरणालय पहुंची। उन्होंने उपायुक्त अभिजीत सिन्हा को ज्ञापन सौंपकर सुचारू आपूर्ति की मांग की। श्री सोरेन ने कहा कि बिजली कटौती से जलापूर्ति ठप है और लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। प्रदेश कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के लिए जिला प्रभारियों की नई सूची जारी की है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में राज्य के सभी प्रमंडलों में नियुक्तियां की गई है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से उठाना है। टाटानगर रेलवे स्टेशन जल्द ही विश्वस्तरीय बनेगा। अमृत स्टेशन योजना के तहत 290 करोड़ रुपए की लागत से इसका पुनर्विकास कार्य तेजी से जारी है। यहां 6 मंजिला आधुनिक भवन, आधुनिक प्रतीक्षालय और 10,000 वाहनों की पार्किंग जैसी सुविधाएं मिलेंगी। रेलवे ने इस बड़ी योजना को अगले 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिकों से एक समय का भोजन न करने का आग्रह किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि गृहमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने नागरिकों से केवल सरकारी स्रोतों से ही सत्यापित जानकारी प्राप्त करने का आग्रह किया है। नागरिकों को केंद्र सरकार से संबंधित किसी भी संदिग्ध जानकारी, वीडियो या तस्वीर को पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई सोशल मीडिया हैंडल पर भेजने की सलाह भी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से अब चतरा जिला सीधे रेल सेवा से जुड़ेगा। रेल मंत्रालय ने बिहार के परैया से चतरा तक 75 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को मंजूरी दे दी है। करीब 2500 करोड़ रुपए की इस विशेष परियोजना की जानकारी आज स्थानीय सांसद कालीचरण सिंह ने प्रेस वार्ता में दी।
3: चतरा और गया का रेल लाइन का अधिसूचना जारी हो गया, जो 75 किलोमीटर का रेल लाइन है। विशेष अधिसूचना के तहत चतरा गया रेल लाइन को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। स्पेशल स्टेटस के अनुसार 531 करोड़ जो अलॉटेड हुआ है, उसमें से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो जाए। जितने भी अड़चने हो, फॉरेस्ट का, एनओसी का हो, जितनी भी चीजें हो, उनसे जितनी भी अड़चन का हो दूर हो जाए और समस्या की ओर जो समाधान करते हो आगे के कार्य की प्रगति करे, इसलिए स्पेशल स्टेटस इसको दिया गया है।
1: सिमडेगा पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी मामले में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। डीएसपी रणवीर सिंह ने बताया कि पूर्व में टुकुपानी से 42 किलो गांजा और 3 पिस्तौल के साथ तस्कर पकड़े गए थे। इसी मामले में एसपी श्रीकांत एस खोटरे की विशेष टीम ने बिहार और ओडिशा के 2 अन्य आरोपियों को दबोचा है। और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज दोपहर बाद गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए कई जिलों के लिए येलो और कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए तेज आंधी और वज्रपात की चेतावनी दी है। विभाग ने लोगों को खराब मौसम में सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। सरायकेला खरसावां द्वितीय जिला स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता का समापन हो गया है। श्रीनाथ यूनिवर्सिटी और जिला योगासन खेल संघ द्वारा आयोजित इस स्पर्धा में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथियों ने विजेताओं को मेडल सौंपे। अब ये खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम नॉन स्टॉप अंत्याक्षरी। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म सिलसिला से। कार्यक्रम आप सुनेंगे इस संदेश के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

दोस्तों, इसी प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम नॉन स्टॉप अंत्याक्षरी यहीं पे संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कार्यक्रम रांची मेलोडीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को आपकी रेडियो दोस्त अमृता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म नीलकमल का यह प्यारा सा गीत। मोहम्मद रफी के स्वर में बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने और सुरल से संवारा है

किशोर कुमार के स्वर में आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म प्रेम पुजारी से। गीत के बोल लिखे हैं नीरज ने और धुन बनाई है एसडी बर्मन ने।

दोस्तों फिल्म अभिमान का गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में। संगीत है एस डी बर्मन का और रचना मजरू सुल्तानपुरी की है।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रांची मेलोडीज आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आइए सुनते हैं फिल्म दुल्हन वही जो पियामन भाई का गीत येसुदास के स्वर में और बंसारी सेन गुप्ता हेमलता के स्वर में। संगीतकार गीतकार हैं रविंद्र जैन।

दोस्तों फिल्म शर्मिला का गीत आइए सुनते हैं किशोर कुमार के स्वर में। धुन बनाई है एसडी वर्मन ने और गीत के बोल लिखे हैं नीरज श्रीधर ने।

दोस्तों, कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं फिल्म पत्थर के सनम से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। जेटेट भाषा विवाद सुलझाने के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी की आज रांची में पहली बैठक हुई। मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के बाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद और दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग से नई नियमावली में सुधार के लिए विस्तृत रिपोर्ट तलब किए गए हैं। रांची के प्रोजेक्ट भवन में आज आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 316 सहायक आचार्यों और 17 महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नवनियुक्त शिक्षक सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि राज्य के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। रांची की बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में महिला कैदी की कथित यौन शोषण मामले पर भाजपा ने राज्य सरकार को घेरा है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने आरोप लगाया कि जेल अधिकारियों की मिलीभगत से मामले को दबाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जांच उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से करने की मांग की है। रांची जेल यौन शोषण मामले में कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने साफ किया कि महिला कैदी की मेडिकल जांच में गर्भावस्था की रिपोर्ट नकारात्मक आई है। श्री सिन्हा ने विपक्ष पर मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया है। पलामू जिले के छतरपुर में NH 98 पर आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सल्दा गांव के पास चलती बस किससे गिरकर एक युवक की मौके पर मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे और चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। राज्य में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आज रांची, खूंटी और गुमला सहित दक्षिणी तथा मध्य भागों में 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बारिश और वज्रपात की आशंका है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ साथ चलें। कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय होगा जनगणना राष्ट्र निर्माण और विकास की आधारशिला। भेंट वार्ता जनगणना 2027 के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। भेंट वार्ताकार श्री राम नारायण सिंह, भेंटकर्ता सिंधु मिश्रा, प्रस्तुति नूतन प्रसाद की होगी।

0: और सही जानकारी देकर इस राष्ट्रीय कार्य में अपना योगदान दे। जनगणना जितनी सटीक होगी, देश का विकास उतना ही मजबूत और योजनाबद्ध होगा। श्रोताओं, जनगणना 2027 से संबंधित कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको आज कार्यक्रम में करवाने जा रहे हैं। हमारे साथ आज कार्यक्रम में हैं श्री राम नारायण सिंह, एडिशनल कलेक्टर रांची। तो लेते हैं इनसे जनगणना 2027 के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं एडिशनल कलेक्टर रांची सर का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं कार्यक्रम में। नमस्कार सर।
1: हाँ नमस्ते, और सभी आपके श्रोताओं को भी नमस्कार।
0: सर, आज मुख्य रूप से कार्यक्रम में हम आपसे बातें करना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे जनगणना के संबंध में। जो जनगणना 2027 के लिए आरंभ की गई है और अभी तो ये प्रथम चरण की शुरुआत इसमें हुई है, तो जनगणना का क्या प्रमुख उद्देश्य है ये हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे।
1: जनगणना का उद्देश्य सरकार के स्तर से जो हमारे देश के सभी आंकड़े हैं, डाटा है, उसको इकट्ठा करना होता है और उस डाटा का उपयोग विकास के कार्यों में किया जाता है। यही जनगणना का मूल उद्देश्य होता है, जो सामाजिक आर्थिक स्थिति को अंदाजा करते हुए और प्रत्येक 10 वर्षों में हमारा कितना विकास हुआ उसका अंदाजा करते हुए फिर आगे की रणनीति तैयार करने के लिए आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं।
0: इन आंकड़ों को आपने बताया सर कि विभिन्न योजनाओं के विकास के लिए इसको किया जाता है, तो आंकड़े जो एकत्रित किए जाते हैं तो विकास के क्या मायने हैं? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों में भी इन आंकड़ों का उपयोग होता है?
1: विकास के सभी क्षेत्रों में इन आंकड़ों का उपयोग होता है और ये सरकार के स्तर से ही इसका उपयोग होता है, किसी निजी स्तर से इसका उपयोग नहीं होता है, सभी क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है।
0: इसमें अब बारी आती है सर ये जानने की कि जनगणना हमारे भारत वर्ष में, जैसा कि आपने कहा कि 10 वर्षों में ये कराया जाता है, तो हमारे झारखंड राज्य में अभी इसकी शुरुआत मैं देख रही हूँ कि हो चुकी है, प्रथम चरण की शुरुआत है, तो इसमें किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है?
1: यह हमारी 16वीं जनगणना है और स्वतंत्रता के पश्चात 8वीं जनगणना है। यह पूर्ण रूप से डिजिटल जनगणना है। इसका सभी लोगों का के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसमें डिजिटल प्रचार है और पंपलेट के माध्यम से एवं अन्य जो ग्राम सभा के माध्यम से सभी जगहों से इनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि जनगणना में लोग स्वयं भाग लें। इसमें इस बार महत्वपूर्ण ये है कि मैंने स्वगणना करना है, तो ये अभी जो चल रहा है 16 तक का चल रहा है, अब जो सेल्फ कर सकते हैं सभी व्यक्ति, और फिर 16 तारीख से उसका जो प्रगणक जो है जो सेल्फ करेंगे उसके फिर प्रगणक जाके उसका जांच करेंगे
0: जी। तो ये डिजिटल जनगणना के बारे में थोड़ी सी और जानकारी मैं आपसे चाहूँगी सर।
1: डिजिटल जनगणना ये एक भारत सरकार का पोर्टल है, sesensus.gov.in। इस पे आप जाएंगे और इसके बाद आपका एक मोबाइल से आपका OTP के माध्यम से लॉगिन होगा और उसके बाद उसमें प्रश्नोत्तरी आता है कि विभिन्न 33 तरह के प्रश्न हैं जिसका कि प्रश्नोत्तरी आता है और आप उन प्रश्नों को भरेंगे और वो फिर उसको इंटर कर देने से वो जनगणना हो जाता है, मतलब कि अभी मकान गणना जो हमारा चल रहा है, गृह गणना, वो हो जाता है।
0: ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कई विवादित मामले लोगों के बीच में रहते हैं, जैसे घर को लेकर, परिवार को लेकर, और ऐसे में परिवार के कुछ सदस्यों का पलायन भी अन्यत्र हो जाता है, तो ऐसे में स्वगणना अगर लोग कर रहे हैं डिजिटल माध्यम से तो क्या प्रक्रिया हो सकती है? क्योंकि कोर्ट में भी बहुत सारे विवादित मामले चल रहे हैं, तो वैसी स्थिति में लोग क्या करें?
1: जनगणना से विवाद का कोई रिलेशन नहीं है। जनगणना तो जिसे आप एक व्यक्ति का अभी जो मान ले 2 मकान है

0: मकान है तो वो अपना डाल सकते हैं, किसी का कोई एक मकान है, कोई दो मकान है, कोई तो वो सभी चीज़ उसमें डाला जाएगा और उस परिवार के हेड का नाम डाला जाएगा, यही जनगणना है। विवाद का किसी प्रकार का इसमें कोई कनेक्शन नहीं।
1: यानी कोई भी व्यक्ति घर बैठे डिजिटल माध्यम से 15 मई तक ये इस कार्यक्रम में भाग ले सकता है, अपना योगदान दे सकता है, स्वगणना कर सकता है जी। और डिजिटल माध्यम से तो आपने बताया सर कि 15 मई तक इसका समय निश्चित किया गया है, और ऐसे लोग कैसे और कब तक कर पाएंगे?
0: उसके बाद फिर 16 मई से 14 जून तक प्रत्येक प्रत्येक मकान पे, प्रत्येक गृह पे प्रगणक जाएंगे और उसकी गणना करेंगे। जो जो 33 तरह के प्रश्न हैं डिजिटल मोड में ही, वो जो प्रगणक हैं वो डिजिटल मोड में ही कार्य करेंगे, कंप्लीट काम डिजिटल मोड में ही होगा।
1: सबसे पहले अब मैं ये जानना चाहूँगी सर कि इन जनगणना का हमारी सरकार को क्या लाभ पहुँचेगा, हमारी सरकार कैसे इससे लाभान्वित होगी?
0: ये जनगणना एक प्रक्रिया है जो लगातार चलते आ रही है और सरकार के द्वारा ही इसको कराया जाता है, और सरकार जो ये जो डाटा इकट्ठा होता है विभिन्न प्रकार के जो डाटा 10 वर्षों के बाद जो डाटा मिलता है, उस डाटा का इस्तेमाल सरकार अपने जो नागरिक है उसके उन्नति के लिए और जो हमारे देश के प्रगति के लिए उसका इस्तेमाल सरकार करती है।
1: सरकार के बाद अब मैं जानना चाहूँगी आम जन को इससे क्या फ़ायदा पहुँचेगा और क्या लाभ उनको मिलेगा?
0: आम जन को बहुत फायदा होता है, जो जो हमारी नीतियाँ, जो हमारी सरकार की नीति, जो हमारे सरकार का जो फोकस होता है वो इन्हीं तथ्यों के आधार पर तय किया जाता है कि हमारा कौन क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, कौन क्षेत्र हमारा कौन समाज आगे है, कौन इन्हीं आधार पर सरकार का फोकस तय होता है, तो उससे उस क्षेत्र के विकास में सहायता मिलती है। लोगों को चाहिए कि बढ़ चढ़ के इस जनगणना में भाग लें और उसको पूरा करें।
1: सर, इस जनगणना के आंकड़ों से हमारे शहरी और ग्रामीण जीवन जो विकास से काफ़ी प्रभावित होता है, तो इन्हें क्या लाभ पहुंच सकता है?
0: शहरी और ग्रामीण जीवन में भी इन आंकड़ों का उपयोग होता है। जब हम जो शहर के विकास को देखते हैं तो उसमें भी ये जो कलेक्ट डाटा कलेक्ट होता है उससे इसका फ़ायदा होता है।
1: सर, इस जनगणना में मीडिया भी अहम भूमिका निभा रही है, तो आप अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे कि मीडिया के बंधु इसमें कैसे अपना सहयोग दें?
0: मीडिया के बंधु इसमें अपना सहयोग देते ही हैं और हम लोग समय समय पर उनको बुला के जो जो जनता को सूचित करना है उनके माध्यम से सूचित करते हैं। मीडिया के बंधु लगातार इस पर अपना जो चूँकि स्वगणना का मामला है तो स्वगणना करते हैं या अन्य भी जो लोगों तक सूचना देते हैं, जिससे कि हमारे जो प्रगणक जाते हैं तो उनको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, लोग उनको एक सरकारी सेवक के तरह व्यवहार करें, तो ये सारे सूचना मीडिया के माध्यम से ही जाती है। और मैं अनुरोध करता हूँ कि इसको और विस्तार से मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया जाए, जिससे कि इसका सभी लोग इसमें अपना भागीदारी निभा सकें।
1: एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ उठता है सर कि जब जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लोग स्वगणना भी कर रहे हैं और बाद में आपने कहा कि अधिकारीगण भी घर घर जाकर इसकी गणना करेंगे, तो अगर मान लीजिए किसी से अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती है, इसमें कहीं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन चला जाता है, तो क्या इसकी भूल सुधार की भी कोई प्रक्रिया है?
0: जब आप स्वगणना करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का अगर भूल हो जाता है तो वो रिपीट करने, उसको चेंज करने का है, लेकिन आप एक बार इंटर कर देते हैं तो पुनः वो नहीं हो सकता है, पुनः वापस नहीं हो सकता है।
1: क्या कुछ अधिकारियों को कुछ कागज वगैरह भी जमा करना है या फिर ऐसे ही वो सहज रूप से ये गणना हो जाएगी?
0: इसमें किसी प्रकार का कोई कागज जमा नहीं करना है, सभी सभी डाटा डिजिटल मोड में ही जाएंगे, वो जो बताएंगे वो उतना ही वो सही होगा। इसलिए अनुरोध रहता है सभी लोगों से कि इसमें सही बात को ही बताया जाए।

0: जी, और अंत में जो श्रोता अभी कार्यक्रम के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, उन्हें आप संदेश के रूप में क्या कहना चाहेंगे सर?
1: आपके सभी श्रोताओं से आग्रह है कि इस जनगणना में भाग लें, जो स्वगणना करें और रांची जिला को अग्रणी बनाएं।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त हमारे कार्यक्रम के लिए निकाला और श्रोताओं को इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी मतगणना से संबंधित दिया, धन्यवाद सर।
1: धन्यवाद आपको भी।
0: श्रोताओं अभी हम कार्यक्रम आओ साथ चलें के तहत जानकारी ले रहे थे जनगणना 2027 के संबंध में, और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ थे श्री राम नारायण सिंह, एडिशनल कलेक्टर रांची। सर के द्वारा जितनी भी बातें बताई गई ये बेहद महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो इन बातों को आप ध्यान में रखते हुए थोड़ी जागरूकता, थोड़ी सहभागिता इसमें निभाएं और सहयोग करें। श्रोताओं इस बातचीत के बाद अब सुनवाती हूँ एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अंत में आप सबसे बस यही कहूंगी कि जनगणना केवल लोगों की गिनती भर नहीं है, बल्कि यह देश की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण दर्पण है। इसी के आधार पर सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं को बेहतर ढंग से तैयार करती है। वर्ष 2027 की जनगणना आधुनिक तकनीकी, डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शिता के साथ देश के विकास को नई दिशा देने का माध्यम बनेगी। ऐसे में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी और सही जानकारी बेहद जरूरी है। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम जनगणना 2027 विकसित भारत की मजबूत आधारशिला में आपने जाना कि जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि देश के भविष्य की योजना तैयार करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। सही जानकारी देकर हम न केवल अपने अधिकारों और सुविधाओं को मजबूत बनाते हैं, बल्कि देश के विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हैं। इसी आशा के साथ कि आप सभी जनगणना 2027 में सक्रिय सहयोग देंगे, कार्यक्रम की सहयोगी सिंधु मिश्रा को अब दें अनुमति। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ साथ चलें। प्रस्तुति स्वर था सिंधु मिश्रा का और प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए हम आपको संक्षिप्त जानकारी दे दें हमारे आज के सांध्यकालीन प्रसारण की। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 4:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। मुख्य समाचार आप सुन सकते हैं शाम 5:00। युवा श्रोताओं को संबोधित होगा कार्यक्रम युववाणी, जिसे आज प्रस्तुत करेंगे आद्या शक्ति और प्रज्ञा। प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। समय होगा 5:02। 5:30 पर होगा हमारा औद्योगिक प्रसारण श्रमिक लोक। आज आप इस कार्यक्रम में सुनेंगे चर्चा संस्कृति के संवाहक आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे योगेश्वर राम और जया श्रीवास्तव। प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की। मुख्य समाचार अब सुन सकेंगे शाम 5:00 और 6:02 से आरंभ होगा हमारा ग्रामीण प्रसारण हमारी दुनिया और खेती बारी। पहले आप सुनेंगे खेती बारी और उसके बाद 6:30 से हमारी दुनिया। प्रादेशिक समाचार होंगे शाम 7:00 और 7:11 पर जिले में आज कल। 7:15 का समय होगा हमारे दैनिक प्रसारण आदिवासी अखड़ा के लिए, जिसे आज आप सुनेंगे उरांव भाषा में। प्रस्तुति होगी प्रदीप कुमार की। 7:45 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद और 8:00 से फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। सुर्खियों में सुन सकते हैं 8:30 पर और 8:45 पर समाचार संध्या का आज का अंक। 9:00 न्यूज एट 9 और 9:15 से उर्दू में समाचार। इन्हें रिले करेंगे हम अपने दिल्ली केंद्र से।

पब्लिक स्पीक का समय होगा 9:30, इसे भी आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, और 10 बजे से होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरी यादें। 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत में वायलिन में राग श्याम कल्याण। कलाकार होंगे वीजी जोग। पुनः हिंदी में समाचार होंगे रात्रि 11 बजे, और 11:05 पर आप सुन सकते हैं समाचार अंग्रेजी में। मीडियम वेव पर हमारी सभा समाप्त हो जाएगी रात्रि 11:10 पर, लेकिन एफएम पर हमारे प्रसारण का आनंद आप सुबह 6 बजे तक उठा सकते हैं। तो श्रोताओं, ये था संक्षिप्त विवरण हमारे आज के संध्याकालीन प्रसारण का।

0: अगर हमने बतख पाले हैं तो हर रोज में अगर मान लो वो अंडा देते रहेगी, अगर मान लो हम लोग अगर किसान या हमारे परिवार में कोई भी बीमार हो जाता है या कोई पर्व त्योहार भी हो जाता है तो हमारे जो है कि मुर्गा बतख जो है कि अंडा देना बंद नहीं करता है कोई भी पूजा फेस्टिवल में, तो इसी कारण से हमारा पैसा जो इनकम है किसानों का रुकता नहीं है,
1: रुकता नहीं है।
0: तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि खेती कैसे करें कि हमारा पैसा रुके नहीं।
1: अच्छा, तो आप कुछ सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं क्या?
0: कुछ हम लोग तक सूचना मिलता है किसानों तक तो हम लोग उस चीज़ को लेते हैं, अगर जब हमारे तक सूचना नहीं मिलता है तो अपने आप पर हम लोग निर्भर रहते हैं।
1: अच्छा, तो कुछ कृषि उपकरण आपको प्राप्त हुई है?
0: ऐसा हमारे ब्लॉक तरफ से हम लोग सामूहिक रूप से एक कोनोबिडर दिया गया था।
1: अच्छा,
0: कोनोबिडर दान के समय में हम लोग को इस तरह का लगाना के लिए उस वहाँ बीच में कोनोबिडर चला सकते हैं।
1: जी जी जी, तो आपने जब ये सारे चीज लगाए हैं तो आपने कितने एकड़ में आपने खेती की है?
0: ऐसे खेती तो हमारा बहुत बड़ा इधर उधर होते रहता है जी, हमारे कहे के लिए एक ही जगह पर खेती नहीं है, लेकिन जहाँ हमने अभी बागवानी जो सालों भर की खेती करते हैं वहाँ एक एकड़ में हम करते हैं।
1: अच्छा, तो इसमें मतलब आपने इतने एक एकड़ में खेती की है तो सिंचाई की भी तो जरूरत होगी, तो ये सिंचाई की जो व्यवस्था आपने किस तरह से की है?
0: पहले तो हमने एक पेट्रोल वाला जो एक मशीन था वो लिए थे, अभी तत्काल हमने एक से डेढ़ साल हो गया हमने इलेक्ट्रिक की व्यवस्था की है, जिसे इलेक्ट्रिक से तालाब में पानी से इलेक्ट्रिक के द्वारा पानी को चलाते हैं।
1: अच्छा अच्छा, तो वो आपको नदी से पानी खींचे हुए हैं?
0: जी जी।
1: अच्छा, अच्छी बात है। तो जैसे आपने मछली पालन भी की हुई है तो मछलियों पे मतलब कुछ रोग वगैरह लगते हैं क्या?
0: हाँ, इस ठंडा के समय में थोड़ा बहुत बीमारी लगती है, तो उस चीज़ का हम लोगों ने अगर जैसे हम लोग उतना तो जानकारी नहीं, लेकिन हमारा जो दुकान में चले जाने से तो वहाँ पर वो लोग दवा देते हैं कि इस तरह की बीमारी हुई है तो क्या दवा देने से, तो वहाँ से उपलब्ध करा देते हैं।
1: तो आपको हर साल मछलियों से मतलब कितना इनकम प्राप्त हो जाता है?
0: 30-40 हज़ार तक लगभग साल
1: मतलब
0: में,
1: हर साल में जी। और साग सब्जियों से?
0: साग सब्जियों में वही 50-60 हज़ार रुपया लगभग हो जाता है।
1: तो इसके अलावा आपने फल की भी बगीचा तैयार किया?
0: जी जी जी।
1: तो फलों का जैसे बोले आम हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, तो आपने कौन कौन से फल की जो पौधे लगाए?
0: हमारे पास अभी जो तैयारी हालत में है अमरूद है और संतरा है और नींबू है, और बाकी जो है कि अभी लगाए हुए हैं वो कटहल है, ये सब अभी तैयारी नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो है हर साल हम सीजनली जो दो बार जैसे अमरूद पकता है तो दो बार हम सीजनली बेचते हैं।
1: अच्छा, तो फल की जैसे आपने पौधे लगाई हैं तो कितनी दूरी पे, कितनी गड्ढाई पे ये फलों को लगाना चाहिए?
0: अब 10x10 की दूरी में लगाए हैं, दो से ढाई फीट हमने गड्ढा किए थे उस पर लगाए हैं।
1: तो पौधा लगाए थे कि बीज लगाए थे?
0: हम लोगों को क्या बोलते हैं, कलमी वाला जो उपलब्ध किया गया था। अच्छा, तो उस चीज को हमने लगाए थे।
1: तो आप बाजार से ही खरीदे?
0: जी जी जी।
1: तो बाजार उसमें भी उतने ही बीज होते हैं?
0: जी जी।
1: अच्छा, तो खाद कौन सा देते हैं?
0: गोबर खाद हम लोग गड्ढा भर के देते हैं। अच्छा। और उसके बाद समय समय पर जो है कि DAP यूरिया फॉस्फेट पोटास उसको चारों ओर कोड़ाई करके देते हैं और समय समय पर सिंचाई करते हैं।
1: अच्छा, जैसे कि गोबर खाद तैयार होता है तो ये जो गोबर खाद गांव में अधिकतर देखते हैं कि एक गड्ढा तैयार करके उसमें गोबर फेंक दिया जाता है, तो

वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी जलवायु पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है। इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और समुन्दर का जलस्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इससे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है, ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जो आपको दिखाएगी कि जलवायु परिवर्तन हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसमें साफ पानी

0: मोटी भूखंड है। अच्छा। भूखंड बोलिए या चट्टान बोलिए, हाँ। जो कम से कम 100 से 200 किलोमीटर मोटी होती है। अच्छा। जो ऐसे हम लोग साधारण तौर पर 7 महादेश हम लोग जानते हैं, हाँ। तो प्रत्येक महादेश का एक भूखंड है, हाँ। प्राचीनतम भूखंड। अच्छा। जो सागरीय सागर में अलग है और महाद्वीप में अलग है। अच्छा। जब ये महाद्वीपीय प्लेट और सागरीय प्लेट, जिसको प्लेट ही कहा गया है, मोटी भूखंड है, तो आपस में जब टकराव होते हैं, टकराव का स्थिति बनते हैं, तो आपस में टकराने के क्रम में एक प्रकार का कंपन पैदा होता है। अच्छा। और कंपन पैदा होने से हमारे पृथ्वी के धरातल में, पृथ्वी की ऊपरी परत में भी कंपन होने लगता है।
1: हाँ, सभी लोग कंपन महसूस करते हैं।
0: कंपन महसूस करते हैं।
1: अच्छा।
0: तो जब कंपन महसूस करते हैं तो हम कहने लगते हैं कि भूकंप हो रहा है।
1: अच्छा।
0: और भूकंप का जो, जब भूकंप टकराता है दो प्लेटों के साथ, तो सबसे पहले उसका कंपन पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती है।
1: अच्छा।
0: जिसके कारण पृथ्वी के ऊपरी परत में जो जीव जंतु सजीव जो रहते हैं, हाँ। उनको सबसे पहले झटका महसूस करते हैं।
1: अच्छा अच्छा।
0: हाँ। यही भूकंप का।
1: तो जगन्नाथ जी, हम इसमें एक बात आरंभ में कहना चाहेंगे कि जैसे कि भूकंप आने का जो आभास है, ये सिर्फ मानव को ही सबसे पहले मैंने महसूस होता है कि जो जीव जंतु हैं, सांप या पक्षी, ये सबको भी आभास होता है?
0: देखिए, ऐसे मानव तो थोड़ा विवेकशील प्राणी है, जिसके कारण मानव को तो विभिन्न प्रकार के संचार माध्यम तथा मैंने आजकल उपग्रह संचार माध्यम लगा हुआ है, जिसके कारण मानव को तो पता चलता ही है, लेकिन कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जैसे सांप हुआ, चूहा हुआ, तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो बिलों में रहते हैं, उनको सबसे पहले आभास हो जाता है कि अभी पृथ्वी में कुछ कंपन हो रही है, कुछ होने वाला है। कुछ ऐसे पक्षियां भी है जिनको पता चल जाता है, पृथ्वी के संबंध में जानकारी मिल जाती है उनको, आभास हो जाता है।
1: तो ऐसी स्थिति में चूहे या बिल जो अंदर में रहते हैं, पृथ्वी के अंदर में रहते हैं, तो वे क्या जल्दबाजी से भाग जाते हैं या फिर चिड़ियां चहचहाने लगते हैं? किस तरह का हम लोग उससे आभास महसूस करते हैं?
0: जैसे वो लोग जब बिल के अंदर रहते हैं, तो वो लोग बिल से बाहर निकल जाते हैं, और हम लोग हमेशा देखते हैं चींटी भी उस सबसे उसका आभास से वो बाहर आते हैं। अच्छा, अच्छा। और अपना जो जमीन में आकर के रहने लगते हैं।
1: अच्छा अच्छा। तो हम इसका सबसे बड़ा कारण तो हम देख ही रहे हैं कि इस तरह से होती है, लेकिन इनका होने का कारण हमारे भारत देश में और ऐसे भारतीय महाद्वीप में कहीं कहीं कुछ इस तरह का प्रभाव पड़े हैं, ऐसा कोई उदाहरण भी है?
0: जी बिल्कुल। जैसे ऐसे विश्व स्तर पर देखा जाए, तो विश्व में बहुत ही ऐसा मैंने भूकंपीय क्षेत्र माना जाता है, जो प्रशांत महासागरीय परिप्रशांत पेटी बोलता है। अच्छा। तो जापान का जो पूर्वी क्षेत्र बिल्कुल ही भूकंप से ग्रसित क्षेत्र है।
1: अच्छा, अच्छा।
0: क्योंकि वो प्रशांत महासागरीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच हमेशा टकराव होते रहता है, जिसके कारण उसके तटवर्ती क्षेत्र हमेशा टूटा फूटा है, और उसके ऊपर में जो धरातलीय भाग है, उसमें हमेशा हल्के किस्म का मकान भी बनाए जाते हैं, और ताकि मैंने भूकंप हमेशा होते रहने से मकान के धसने का डर बना रहता है।
1: अच्छा।
0: और उसके बाद फिर भारत में अगर हम देखें, तो भारत में गुजरात का कच्छ क्षेत्र,
1: अच्छा।
0: जो कम से कम नहीं भी तो 5000 किलोमीटर से अधिक लंबाई गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र है,
1: हाँ।
0: तो उस क्षेत्र में जो तटवर्ती क्षेत्र है, वो तटवर्ती क्षेत्र अत्यंत कटाछटा है।
1: अच्छा।
0: इसका अर्थ यही है कि अरब सागरीय प्लेट और भारतीय प्लेट दोनों एक दूसरे के टकराव का स्थिति हमेशा बना रहता है, जिसके कारण गुजरात का कच्छ क्षेत्र भूकंप के लिए काफी काफी ही मैंने जाने जाते हैं। और 26 जनवरी 2001 को वहां पर भूकंप आए थे, तो जिसमें लाखों का नुकसान हुआ था, बड़े बड़े मकान धस गए थे, और जितना संचार माध्यम सभी प्रकार का मैंने व्यवस्था ठप हो गया था। इसके अलावा बिहार में भी भूकंप आया, जिसमें 26 अगस्त 1833 को बहुत भयानक भूकंप आया था, इसमें 100 से ज्यादा मकान ढह गया था।
1: अच्छा,
0: 16 जून 1819 को भी गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भूकंप आया था, 2000 से भी ज्यादा व्यक्ति उसमें भी मर गए थे। कश्मीर में भी 30 मई 1885 को एक बार भूकंप आया था, इसमें 30,000 से ज्यादा व्यक्ति

0: उस समय भी मर गए थे। ऐसे भारत में अगर भूकंपीय क्षेत्र को देखा जाए तो बहुत ही ऐसा क्षेत्र हमारे हैं।
1: अच्छा, महाराष्ट्र के लातूर भी इस तरह का नाम प्रसिद्ध है, यहाँ भी हुए थे क्या?
0: हाँ जी, लातूर में, लातूर के किलारी सितंबर 1993 को लाखों मकान ध्वस्त हो गए थे, इसमें 30,000 से ज्यादा लोग मर गए थे।
1: अच्छा, फिर गुजरात का भी नाम आता है कभी कभी।
0: जी, गुजरात में भी, गुजरात तो एक कच्छ जो है वही गुजरात का क्षेत्र है, वो सबसे समुद्री तटवर्ती क्षेत्र है। आसाम है, उसके बाद क्या बोला, बंगाल का ढाका बांग्लादेश जुड़ा हुआ है। हाँ, उसके बाद बिहार तो है ही, कश्मीर, और हमारा जो समुद्र का क्षेत्र अंडमान निकोबर, वहां पर भी भूकंप का क्षेत्र है।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता। भूकंप की जानकारी दे रहे थे जगन्नाथ जी, और उनसे बातें कर रहे थे यदुनाथ। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये संदेश।
3: बदलो,
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बदलो आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: और अब कुछ जानकारी की बातें। दोस्तों, मिशन वात्सल्य योजना, जैसे कि आप जानते ही हैं, परिवार सिर्फ जैविक रिश्तों से नहीं बनता, यह प्यार और देखरेख से भी बनता है। हमारे ज़िले में कई ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता, या जो वर्तमान में संस्थागत देखरेख में हैं। ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य योजना चलाई जा रही है। इसे पालन पोषण देखरेख योजना भी कहा जाता है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार में देखरेख की आवश्यकता होती है, और इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकता अनुसार या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख से योजना लाभान्वित किया जा सकता है। यह योजना गोद लेने की प्रक्रिया नहीं है, पर एक अस्थायी व्यवस्था है जहां बच्चा प्यार, सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है, जब तक वो फिर से अपने जैविक परिवार में ना चला जाए। अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो आप भी पालक माता पिता बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता की आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, और यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे के पालक बनना चाहते हैं तो उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष या दोनों का सम्मिलित आयु 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन एकल पुरुष को बालिका नहीं दी जा सकती। अगर आप पश्चिमी सिंहभूम जिला के निवासी हैं एवं आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र, पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो, पालक माता पिता शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हों, परिवार हर बच्चे का अधिकार है, तो आइए जरूरतमंद बच्चों को हाथ बढ़ाइए और उन्हें एक अच्छा भविष्य दें। इस योजना के तहत जरूरतमंद इच्छुक परिवारों को मासिक 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाता है। अधिक जानकारी हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई 9955131364 या 9090700489

पर संपर्क करें। नंबर एक बार पुनः सुन लें, 9955131364 या 9090700489 पर संपर्क करें, या फिर जिला बाल संरक्षण इकाई जिला उपायुक्त का कार्यालय तीसरा तल्ला चाईबासा में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब समय हो चला है मनोरंजन का, तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों आप सुन रहे हैं मुकेश के स्वर में फिल्म रजनीगंधा का ये गीत, और इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम युवाणी अब हम यहीं समाप्त करते हैं। कार्यक्रम से दीजिए अपनी दोस्त रेखा को विदा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के
2: यात्री
3: तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
4: दिमाग चार्ज कर अपना।
5: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
4: देखा
3: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
5: अब क्या करोगे?
3: फ्री वाई फाई है ना?
4: बुद्धू सुधर जा।
5: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाई फाई,
3: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो।
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री,
7: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
8: दिमाग चार्ज कर अपना।
9: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
8: देखा
7: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
9: अब क्या करोगे?
7: तेरी वाइफाई है ना?
8: बुद्धू सुधर जा।
9: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
7: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
9: आरबीआई कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में 316 नव नियुक्त सहायक आचार्यों और 17 महिला पर्यवेक्षिकाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, दो चार महीनों में होंगी हजारों बहालियां। जेटेट भाषा विवाद पर गठित उच्च स्तरीय कमेटी की रांची में पहली बैठक संपन्न। शिक्षा विभाग से मांगा गया क्षेत्रीय भाषाओं का विस्तृत डेटा। उच्च शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज। सेवानिवृत्त कर्मियों को 22 जून तक बकाया भुगतान न होने पर निदेशक का वेतन रोकने का आदेश। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में दोपहर बाद हुई तेज बारिश। मौसम विभाग ने आगामी 21 मई तक जारी किया येलो और ऑरेंज अलर्ट। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमकी रांची की राशि सिन्हा। कोलंबो में आयोजित एशिया केक ऑस्कर 2026 में जीता प्रतिष्ठित पुरस्कार। और अब समाचार विस्तार से। रांची के प्रोजेक्ट भवन में आज आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 316 सहायक आचार्यों और 17 महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नवनियुक्त शिक्षक सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि राज्य के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समारोह में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और श्रम मंत्री संजय यादव भी मौजूद रहे।
1: अभी और भी तैयारी हो रही है, लगता है कि 2-3-4 महीने में और भी हजारों लोगों की नियुक्तियां होंगी। ये नियुक्तियां सिर्फ हम तनख्वाह पाए इसके लिए नहीं है, हम नियुक्ति इसके लिए भी कर रहे हैं, इस अपेक्षा के साथ भी कर रहे हैं कि राज्य

0: समग्र विकास हो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। ओस्लो में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाला 32वां अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक सम्मान है, जो विश्व मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नक्सलवाद का अंत होने के बाद भी हमें चैन से नहीं बैठना है। छत्तीसगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह का हवाला देते हुए कहा कि अगले 5 वर्षों के भीतर सभी प्रभावित गांवों को जीवंत आदिवासी समुदायों में बदला जाएगा, ताकि नक्सलवाद के कारण हुए नुकसान की पूरी भरपाई की जा सके।
2: सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आग्रह रखा है कि नक्सलवाद समाप्त हो गया ऐसा मानकर चैन की नींद नहीं सोना। नक्सलवाद तभी समाप्त माना जाएगा जब नक्सलवाद ने जो नुकसान किया है वो हम 5 साल के अंदर भरपाई कर इस सभी गांवों को हमारे ऊर्जावान आदिवासी गांवों में बदले।
1: जेटेट भाषा विवाद सुलझाने के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी की आज रांची में पहली बैठक संपन्न हुई। मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के बाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद और दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग से नई नियमावली में सुधार के लिए विस्तृत रिपोर्ट तथा तथ्य तलब किए गए हैं।
3: कई तथ्यों कई साक्ष्यों के आधार पर आगे निर्णय लेना है। अभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि तथ्यों और साक्ष्यों को जुटान करें, तत्पश्चात उस पर निर्णय किया जाएगा। समिति अधिकृत किया है आदरणीय चेयरमैन साहब को, इसके जल्दी हमको लगता है कि फिर फ्राइडे या सैटरडे को बैठक होगा, उसका फिर आगे की रिपोर्ट।
1: भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को बाहर किए जाने से उपजे इस विवाद पर अगली बैठक अब 22 मई को होगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कल भुवनेश्वर में पूर्वी क्षेत्रीय भाषा कृषि सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय मजबूत करना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन के दौरान विभिन्न योजनाओं की समीक्षा और कृषि क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और बकाया वेतनमान का लाभ नहीं मिलने पर राज्य सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने निर्देश दिया है कि आगामी 22 जून तक पेंशन और 5वें से 7वें वेतनमान का बकाया भुगतान सुनिश्चित किया जाए। ऐसा न होने पर उच्च शिक्षा निदेशक का वेतन रोक दिया जाएगा। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत आगामी 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि राज्य में अब तक 73% मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि शेष मतदाताओं की सूची 23 मई से सभी मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित की जाएगी, जहां लोग बीएलओ से संपर्क कर मैपिंग करा सकेंगे। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के बीच देश में कच्चे तेल और एलपीजी के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म डोली सजा के रखना का ये गीत, आवाज़ एमजी श्री कुमार और अनुराधा पौडवाल की। इस गीत को सुनना चाहा था बड़ा बाम्बो सुपाई साई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा तांती, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, श्यामदेव नायक, पूजा, सीमा नायक, सुदर्शन प्रमाणिक, ममता, नमिता, सुशीला, ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बासंती, रमेश, अन्नू, बनमाली, सिद्ध कुमारी और पूजा, सरायकेला पारापुर देशावली ग्राम पहाड़पुर से शिवम, शिवाजी मुंडरी, सुरुमानी मुंडरी, हीरामानी मुंडरी, हिमांती डोबरो, साजन, सिद्धेश्वर पारापुर शिवाजी डोबरो, मुकेश, कुशल मुंडरी, जानुम सिंह मुंडरी, सिद्धि बोस, सोना बाबू और शिवा मुंडरी।

ग्राम उघड़िया से नायडू महतो, उषा महतो, प्रिया महतो, डोली महतो, तरुण महतो एवं परिवार के सभी लोग। लालपुर मारो से कीर्ति कुमार ध्रुव, सतीश, विनय ध्रुव, निम्मी, पम्मी ध्रुव, रितेंद्र कुमार ध्रुव। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हृदया खान, आसमा सालिया, सोएब खान, राउफ भाई, साहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और अब सुनते हैं ये संदेश।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म स्वदेश का ये देशभक्ति गीत, आवाज़ उदित नारायण और कैलाश खेर की। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं फिल्म जॉली एलएलबी 2 का ये फरमाइशी गीत, आवाज़ जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की। फरमाइश आप सबों की है। आज़ाद नगर

अक्सर हरिद्वार से, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, धमतरी छत्तीसगढ़ से, संतोष कुमार ध्रुवंशी, श्रीमती सरोज ध्रुवंशी, मास्टर सानू ध्रुवंशी, दुर्गाई सैलू जिला परभनी से चंदू कुलकर्णी, हेमलता सी आर कुलकर्णी, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कागड़ा, बबीता बोध, निखिल कागड़ा, अंकित कागड़ा, साहिल कागड़ा, कुचाई बिद्री से केपी सोए, सरिता दुर्गामती, रेशमी राजकुमारी, विशाल मुन्ना और सन्नी सोए, ग्राम सूढ़ाबेरा से बासी सरदार, बीरू सरदार, रमेश कमल सिंह और अंशु, ग्राम जोजो कुर्मा से सुकरा महतो, पीताम्बर महतो, मुरारी महतो, राजेश महतो, कविराज महतो, सुपाईसाई से कर्ण प्रधान, ज्योति प्रधान, जगबंधु प्रधान, दुश्मन प्रधान, मिथुन प्रधान, बरा कुर्मा से सुदर्शन महली और चिगड़ू महतो, मालीसाई से बिरबल महली, सरस्वती महली, प्रेमचंद महली, फूलमणि महली, शकुंतला महली, सुमानती महली, यशोदा महली, शांति महली। आप सबों की फरमाइश पर सुनवाते हैं जुबिन नौटियाल और नीति मोहन के स्वर में फिल्म जॉली LLB 2 का ये फरमाइशी गीत।

श्रोताओं, इसी गीत को सुनना चाहा था आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती सीतल राजेश। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, सुजला ठाकुर। भाटापारा दंदरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी, लोकेश जोशी। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं कार्यक्रम।

कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत उदित नारायण के स्वर में, फिल्म है गदर, बोल आनंद बख्शी की और संगीत उत्तम सिंह का। इस गीत के फरमाइश करता हैं खरसावा पति साई से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक, सोनवा गांव पोड़ा हाट से मिथुन नायक, राकेश नायक, मुकेश नायक, मखरू आचार्य, तालुका मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजू बाई तड़वी, परू, मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारेकर। मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरशद तरवी, आरिस अरसलान, यूनुस तरवी। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला से मुशर्रफ खां तरवी, जरीना तरवी, मुबारक तरवी, परवेज तरवी, बिटिया रोजमिन तरवी, तैमूर तरवी और समस्त तरवी परिवार। छोटा निमड़ी चाईबासा से बाबूराम, शांति देवी, ऋतिक, कोमल, रोहन। अमला टोला चाईबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और सोनू। अलीका डबवाली से बसंत सिंह चांद, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी। आप सबों की फरमाइश पर सुनवाते हैं फिल्म गदर का ये गीत, आवाज़ उदित नारायण की।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइसी गीतों का कार्यक्रम रजनी गंधा। ये आकाशवाणी का चाई बासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निकम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता

0: का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
1: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए, विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
0: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
1: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
0: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
1: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉय दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी के अटूट प्रतिबद्धता निकले हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 तारीख को इटली में होंगे। यह दौरा 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, एआई साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुँच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमेरिकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमेरिकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमेरिका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
3: कमर्शियल LPG की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 PNG कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने PNG कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में CBI ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate bilateral ties in green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with U.S. industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. West Bengal government sets up 2 inquiry commissions to probe corruption and atrocities against women. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi's first ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership. In a joint statement today, after delegation-level talks with counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo, Prime Minister Modi highlighted that this partnership will ensure increased collaboration in sectors ranging from clean energy to climate resilience, blue economy to green shipping.
4: भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
3: Prime Minister Modi said the India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement serves as a blueprint for shared progress and prosperity.
4: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में 1

0: टेड्रोस ने सेहत के शोबे में भारत की असलाहत और आलमी सेहत शराकत दारी में उसकी क्यादत की तहसीन की और मुश्तरक तरजीहत के ताल्लुक से आलमी सेहत तंजीम के साथ शराकत दारी को मजीद मजबूत करने के अज़्म का इजहार किया। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क की रिफाइनरीज में मामूल के मुताबिक काम हो रहा है और मगरबी एशिया के जारी बहरान के बावजूद भारत में खातिर खा खाम तेल मौजूद है। नई दिल्ली में आज बैन वजारती ब्रीफिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, LPG और कुदरती गैस का खातिर खा जखीरा मौजूद है। इसके बावजूद अफवाहों की वजह से कुछ इलाकों से LPG की घबराहट में खरीदारी की खबरें मिल रही हैं। केमिकल और कीमियावी खादों की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी अपर्णा शर्मा ने बताया कि मुल्क भर में 200 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइजर दस्तियाब है और खरीफ की फसल के लिए कीमियावी खादों की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में वाके धनीवरी में एक बारात को ले जा रहे ट्रक और एक कंटेनर के दरमियान टक्कर से हुए सड़क हादसे में 13 अफराद हलाक हुए हैं और 20 दीगर जख्मी हैं। मरने वालों की तादाद में बढ़ोतरी का अंदेशा है। और आखिर में बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में नॉर्वे के अपने हम मनसब जॉनस घर स्टोर के साथ मुजाकरात किए। उन्होंने बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाकर साफ तवनाई और नीलगू मईशत पर तवज्जो करते हुए ग्रीन कलीदी शराकत दारी तक पहुंचाने से इत्तफाक किया। वजीर आजम मोदी को किंग हराल्ड V ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा। हुकूमत ने इस बरस $1 खरब बरामदाद का निशाना रखा है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने भारत में न्यूक्लियाई तवानाई और प्राइवेट सरमायाकारी के मौके पर अमेरिका के एक सनती वफ से मुजाकरात किए। मगरबी बंगाल की हुकूमत ने बदउनवानी और ख्वातीन के खिलाफ ज्यादतियों की छानबीन के लिए 2 इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिए हैं। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इन दिनों अगर आपके घर में जनगणना कर्मी आकर आपके मकान के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका सहयोग करें और पूरी जानकारी उन तक पहुंचाएं, क्योंकि देशव्यापी जनगणना 2027 के पहले चरण का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जा रही है। इस बार जनगणना कार्यों में पहली बार शुरू की गई है स्वगणना सुविधा, जिसे जनता से काफी उत्साहजनक रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। काफी राज्यों में स्वगणना का जो विकल्प है वो समाप्त हो चुका है और कुछ राज्य अभी बचे हैं। ये पहल जनगणना कार्यों के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इसे कैसे भरना होगा, किस तरह के सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो तुरंत हमें कॉल कीजिए, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम मकान सूचीकरण और आवास गणना पर परिचर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूँ आपके साथ फरहत नाज, और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमने आमंत्रित किया है गृह मंत्रालय के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप महापंजीयक रुशाली वराड़े जी को। नमस्कार रुशाली जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार और धन्यवाद।
0: श्रोताओं, हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं, आप हमारे विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481, 0112371717, 0112371706 और 0112341444 पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9289094044 पर आप सवाल भेजते रहिए। सोशल मीडिया एक्स पर #AskAIR का इस्तेमाल करके भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और रुशाली जी, सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे ही है कि पहले चरण का काम तेजी से शुरू हो गया है, मकान सूचीकरण और मकानों की गणना किस तरह की जा रही है इसमें, और किस तरह के सवाल इसमें जनता के लिए चुने गए हैं?
1: जी, जैसे अभी आपने कहा कि इस बार पहली बार हम स्वगणना की उपलब्ध फैसिलिटी उपलब्ध है पब्लिक के लिए, तो काफ़ी राज्यों में स्वगणना का पीरियड ख़त्म हो चुका है, जो कि हमने 15 दिन के लिए रखा था, और 1 महीने का समय है जो कि प्रगणक घर घर जाके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है।

0: तो कुछ 7 या 8 स्टेट में हमारी स्वगणना कंप्लीट हो चुकी है और HLO का काम भी कंप्लीट हो चुका है। कुछ राज्यों में स्वगणना अभी चल रही है। तो क्वेश्चन के बारे में अगर हम कहें तो जैसे नाम है इस फेज का, मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना,
1: जी
0: तो इसमें हम सिर्फ मकानों की गणना करेंगे और मकान के हालत कैसी है, घर कैसा है और घर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे पीने का पानी कहाँ से आता है,
1: जी
0: पीने का पानी कैसे है, टॉयलेट की सुविधा है या नहीं, बाथरूम की सुविधा है या नहीं, घर में कितने लोग रहते हैं, कितने कपल्स रहते हैं,
1: जी
0: रूम्स कितने हैं घर पे, और घर में एसेट्स क्या है, जैसे जैसे कि रेडियो है या नहीं,
1: जी
0: टेलीविजन है या नहीं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर है या नहीं, तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे।
1: जी रुशाली जी, और सबसे पहले हमारे लिसनर हमसे जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। जी धर्मवीर जी
2: नमस्कार। मैडम
1: नमस्कार।
2: हाँ, एक्सपर्ट को भी नमस्कार। मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे सवाल में मैं ये पूछना चाहूंगा कि घर घर जाके आप इसके लिए इंक्वायरी करेंगे, जानकारी लेंगे, और कुछ घरों में जाने का मतलब ये है कि घरों में महिलाओं का होना, क्या जो आपके जाएंगे वर्कर तो उसमें एक महिला भी होगी साथ, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, जो अगर कोई दिव्यांग है, दिव्यांग का मतलब ये है कि वो अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो कैसे अपने, जो पहले आपने कहा था कि इसमें खुद भी ये दर्ज कर सकता है, और इसके लिए हमें क्या क्या, मैं कित अगर कोई फ्रॉड आ जाता है इंक्वायरी करने के लिए तो ऐसे में हम क्या पहचान करें कि ये आदमी फ्रॉड है कि ये सरकार के भेजा गया ये आपका वर्कर है। धन्यवाद।
1: धर्मवीर जी ने 3 सवाल पूछे हैं रुशाली जी। सबसे पहला सवाल उनका ये है कि अगर महिलाएं घर में मौजूद हैं तो क्या कोई महिला कर्मी भी जनगणना कर्मी के साथ मौजूद रहेंगी?
0: तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, महिला अलग से तो नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो प्रगणक होंगे वो जनरली होते हैं जो स्कूल के टीचर्स होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। हम लोग इंस्ट्रक्शन जरूर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसमें अपॉइंट करें, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन, एक फेथफुली अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट ये कंपलसरी नहीं है और हर घर में एक ही आदमी जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें पूरे इंडिया के लिए 31 लाख प्रगणकों की ज़रूरत है। तो इतने सारे लोगों के साथ मतलब और एक महिला जाना मतलब संभव नहीं है। लेकिन जो तीसरा सवाल है मैं इसी के साथ जोड़ देती हूँ, जो फ्रॉड वाली बात इन्होंने पूछी है धर्मवीर जी ने, तो फ्रॉड की कोई ये नहीं है, क्योंकि प्रगणक के पास अपना आई कार्ड होगा, उसके पास चार्ज ऑफिसर का सिग्नेचर होगा, उस पर स्टैम्प होगा, प्लस QR कोड होगा आई कार्ड पे, और अपॉइंटमेंट लेटर पे भी QR कोड स्कैन कर सकते हैं। तो QR कोड स्कैन होने के बाद हमारी वेबसाइट उस पे आ जाएगी और वेबसाइट पे उसकी डिटेल्स आपको दिख जाएंगे, तो फ्रॉड की बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हालांकि हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप अपने चार्ज ऑफिसर को या लोकल ऑफिसर से बात कर सकते हैं।
1: और दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि दिव्यांग व्यक्ति फॉर्म कैसे भर सकते हैं?
0: जी, तो दिव्यांग व्यक्ति के लिए जैसे पहले ही बताया मैंने, स्वगणना एक अतिरिक्त फैसिलिटी हम दे रहे हैं, ये कंपलसरी नहीं है। प्रगणक हर घर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, अगर आपने स्वगणना की है तो भी प्रगणक घर घर जाके फिर से वो वेरीफाई करेगा। तो अगर दिव्यांग कोई है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, प्रगणक वहां पे जरूर जाएगा और इन्फॉर्मेशन लेके आएगा।
1: और अब हमारे दूसरे लिसनर हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र जी। जी राजेंद्र जी
3: नमस्कार। जी जागृति जी को और विशेषज्ञ जी को नमस्कार।
1: नमस्कार, मैं फरहत नाज बात कर रही हूँ राजेंद्र जी,
3: सॉरी
1: जी। लेकिन मैं आपका नमस्कार जागृति जी को भी पहुंचा दूंगी।
3: जी जी, और मैं ये जानना चाहता हूँ अगर कोई गलत जानकारी देता है या तो कोई उस पे कोई कार्रवाई होगी, या जैसे कोई नोटिस दिया जाएगा जनगणना के बारे में, मकान के बारे में, उस पे क्या कार्रवाई हो सकती है? और जो 33 सवाल पूछे जाते हैं उसमें कुछ ही मेरे से कुछ 2-3 ही सवाल पूछे गए थे, और मुझसे ये पूछा गया था कि आप टीवी देखते हो, तो मैंने उनसे मेरे को ये पूछ लिया था कि आप रेडियो सुनते हो, तो मैंने कहा रेडियो, मैं पहला ऐसा शख्स कह रहा था मिला है इसके बारे में भी।
1: तो इनका सवाल था कि रेडियो सुनते हैं कि नहीं, इस तरह के जो सवाल हैं वो पूछे गए
0: जी। एक तो पहला मुझे लगता है इनका सवाल था गलत जानकारी के बारे में, तो पहले मैं बता दूं कि गलत जानकारी अगर कोई देता है तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है कि उसे कोई पनिशमेंट मिलती है, बट उससे ऊपर जो इम्पोर्टेंट बात है कि सेंसस की इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, सेंसस एक्ट में ये मेंशन है कि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन गोपनीय रखी जाएगी। तो जनरली लोग सही जानकारी देते हैं, और सेंसस एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि लोग अपने बिलीफ से, अपने नॉलेज से सही जानकारी दे। जो डेटा रिलीज होता है वो एक एग्रीगेट लेवल पे रिलीज होता है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होने की कोई भी संभावना नहीं है। तीसरा जो है, जो हमारे 33 सवाल है वो नोटिफाई हो चुके हैं, गवर्नमेंट के गैजेट में नोटिफाई हो चुके हैं, तो उसमें जो भी सवाल है वो सारे उतने ही एनुमरेटर को पूछने हैं और उनका ही जवाब रिस्पोंडेंट को देना है। ये बिल्कुल सही कहा कि टीवी का सवाल उसमें है, रेडियो का सवाल उसमें है, रेडियो आप किस पे सुनते हैं ये भी उसमें पूछा गया है कि आप मोबाइल पे सुनते हैं या आपके पास रेडियो सेट है या फिर आप कार में सुनते हो। उसी तरह टीवी का भी अलग अलग आप कैसे देखते हो, मतलब दूरदर्शन है आपके पास, फ्री डिश या डीटीएच है या फायर स्टिक है, केबल कनेक्शन है, तो अलग अलग सवाल उसमें है।
1: और अगर किसी भी तरह की हमारे श्रोता दिक्कत उठा रहे हैं तो आप मकान सूचीकरण और मकान गणना अनुसूची के लिए वेबसाइट जो पोर्टल दिया हुआ है sec.census.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं और आप सारे सवाल जो है वो इसमें आपको शो हो जाएंगे किस तरीके के सवाल जो है जनगणना कर्मी पूछ रहे हैं, ताकि आपको आसानी होगी उस समय आपका सवालों का जवाब देने में। और रोशाली जी, एक और प्रश्न हमारे पास आया है कि क्या जनगणना में सभी के लिए शामिल होना आवश्यक है?
0: बिल्कुल, जैसे जनगणना का पहला ही जो मोटो है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं या किसी को दोबारा गिनती करेंगे नहीं, तो हर एक को इंक्लूड होना है जनगणना में। और जो बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ, जनगणना अधिनियम के सेंसस एक्ट 1948, उसके हिसाब से हर एक व्यक्ति को या हर एक परिवार के मुखिया को ये कंपलसरी है कि सही सही जानकारी प्रगणक को दे। और ये प्रगणक की भी जिम्मेदारी है कि जितने सवाल गैजेट में पब्लिश हुए हैं उतने ही सवाल पूछे, उसके बिना और कोई भी सवाल ना पूछे, और जो भी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है वो उसको गोपनीय रखे।
1: जी, अच्छा, अगर कोई व्यक्ति मतलब जॉब की वजह से यहाँ पर रह रहा है, दिल्ली शहर में रह रहा है, लेकिन वो बिलोंग करता है किसी दूसरे राज्य से, तो वो क्या दोनों जगह का जो है उसके लिए भरना जरूरी होगा सेल्फ एनुमरेशन?
0: बिल्कुल नहीं, जैसे मैंने कहा सबको जैसे हम इंक्लूड करते हैं तो डुप्लीकेट भी नहीं करते हैं। तो जहाँ पे जनगणना की ये कंसेप्ट है, जो जहाँ पे नॉर्मली रिसाइड करता है, यानी जहाँ पे मैक्सिमम टाइम रहता है, अगर काम के सिलसिले में वो दिल्ली में रहता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दिल्ली में कलेक्ट होगी। उसके अदर फैमिली मेंबर्स अगर गांव में रहते हैं तो अदर फैमिली मेंबर्स की गिनती गांव में होगी, लेकिन जो जहां पे रहता है वहीं पे उसका काउंटिंग होता है।
1: जी, और अब दिल्ली से ब्रह्मदत्त जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ब्रह्मदत्त जी।
4: जी नमस्कार मैडम जी।
1: नमस्कार।
4: हमारे विषय विशेषज्ञ जी को प्रणाम।
0: नमस्ते। प्रणाम।
4: ना, मेरे दो जिज्ञासाएं हैं। पहली है कि जो हमारे दस्तावेज हैं दूसरे शहर के बने हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के, और हम दिल्ली में निवास कर रहे हैं, तो क्या हम दिल्ली की जनगणना में सम्मिलित हो सकते हैं? प्रथम प्रश्न। दूसरी है मैडम, ये है कि अगर हम घर पर नहीं मिलते हैं तो क्या जनगणना स्टाफ को हम अपने समय के हिसाब से बुला सकते हैं? भाई छुट्टी वाले दिन आ जाना आप, तो क्या ऐसा संभव है? एक अन्य प्रश्न है, जो लोग जनगणना में शामिल नहीं होना चाहते, क्या उन लोगों के लिए कोई दंडात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान है? धन्यवाद मैडम जी।
0: धन्यवाद ब्रह्मदत्त जी। तो तीनों सवाल आपके बड़े ही अच्छे थे। पहला तो ये है कि जनगणना में कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, आप जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो प्रगणक को नोट डाउन करनी है। इसीलिए हालांकि हम लोग सबसे अपील करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन सही है वही इन्फॉर्मेशन दे दे, और आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गोपनीय रहेगी, किसी के साथ वो साझा नहीं की जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताती हूँ कि RTI में भी हम इन्फॉर्मेशन देते नहीं है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कोई कोर्ट में अगर सबूत के तौर पर देने के लिए मांगता है तो उसको भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती एज पर सेंसस एक्ट। दूसरा जो सवाल था आपका, अगर आप घर पर नहीं मिलेंगे तो इसके लिए भी हमारे प्रगणक को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अगर घर लॉक मिलता है तो 2 या 3 बार वहाँ पे जाए, छुट्टी के दिन जाए या सुबह जल्दी जाए या शाम को देर से जाए, ताकि घर पे कोई ना कोई मिलेगा। तीसरा जो आपका सवाल था दंडात्मक कार्रवाई का, तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है सेक्शन 11 में कि अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है।
1: तो यानी कि पूरा सहयोग आपको जनगणना कर्मी के साथ करना है और सही सही

0: उनका पहचाने की कैसे कि वो सही व्यक्ति आए हैं मेरे घर पे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ठगी व्यक्ति भी आ सकते हैं हमारे डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो हम उनको पहचानेंगे कैसे?
1: जी धन्यवाद अविनाश जी। और उसको पहचानेंगे कैसे, तो उनके पास आई कार्ड होगा और अपॉइंटमेंट लेटर होगा, जो कि लोकल चार्ज ऑफिसर, हमारे जो चार्ज ऑफिसर होते हैं वो तहसीलदार या मामलतदार होता है आपके एरिया का, या कोई बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो ये इनका स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ प्रगनक के पास एक आई कार्ड होगा, अपॉइंटमेंट लेटर होगा, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर क्यूआर कोड होगा, क्यूआर कोड स्कैन करके आप देख सकते हैं, उसमें आपको हमारी वेबसाइट से सारी डिटेल मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कोई फ्रॉड हो रहा है, तो आप अपने चार्ज ऑफिसर से या एरिया के कोई भी ऑफिसर से उसके कंप्लेंट कर सकते हैं।
2: वैशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास आया है कि खाली मकान, बंद मकान या फिर निर्माणाधीन मकान की गिनती किस श्रेणी में होगी और इन्हें कैसे चिन्हित किया जाता है?
1: जी तो हमारे जो मैंने कहा हर एक क्वेश्चन के अलग अलग कोड है, तो जो हमारा जनगणना मकान के कोड है उसमें कुछ कोड है वैकेंट के लिए, कुछ कोड है अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए, कोड तो नहीं है बट अगर अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग है उसका छत डाला हुआ है तो उसको हम मानते हैं, क्योंकि मेन जो हमारा है सेकंड फेज जो फरवरी 2027 में होगा, तो हो सकता है अभी जो घर आपका अंडर कंस्ट्रक्शन हो फरवरी 27 तक वहाँ पे कोई रहने के लिए आ जाए, तो ऐसे इसीलिए उसको हम गिनती अभी कर लेते हैं, उसको नंबर देते हैं और उसको इन्फॉर्मेशन एज अ वैकेंट कर देते हैं और एक रिमार्क डाल देते हैं कि इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, और जो खाली है उसको एक वैकेंट हम मानते ही है। कुछ ऐसे घर भी मिलते हैं कि घर लिया हुआ है लेकिन लॉक है, रहते कहीं और है, तो उसको भी लॉक के कैटेगरी में हम इंक्लूड करते हैं ताकि सेकंड फेज में वो छूटे नहीं।
2: जी अच्छा, इसमें जनगणना मकान नंबर कौन देता है और दीवार पर लिखने का क्या नियम है?
1: ये प्रगणक देता है और नियम है कि एक प्रगणक को एक जो एरिया देते हैं एनुमरेशन ब्लॉक हम जिसको कहते हैं, छोटा सा एरिया होता है 700 से 800 पॉपुलेशन या 150 घरों का, तो वो पूरे अपने एरिया में सीरियली जनगणना मकान नंबर देता है, एक से लेकर जो भी लास्ट उसके एरिया में होगा तो वो खुद लिखता है। उसके लिए हमने कुछ स्टेशनरी उसको प्रोवाइड की है, मार्कर पेन्स वगैरह दिए।
2: ठीक है, और अब शिमला से हमारे साथ राकेश जी जुड़ गए हैं। जी राकेश जी।
3: जी नमस्कार।
2: नमस्कार
3: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो घर में रहते तो उनकी तो होती है, जो किराए के मकान पे रहते हैं क्या वो भी जनगणना में आता है? उनको क्या जनगणना करानी पड़ती है जो किराए पे रहते हैं?
1: जी बिल्कुल, जैसे फिर से मैं कह रही हूँ कि जनगणना में किसी को छोड़ा नहीं जाता, किसी को दोबारा गिना नहीं जाता, तो अगर आप किराए के भी घर में रह रहे हैं तो जनगणना का पहला जो रूल है कि जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी गिनती होती है, तो आपका घर खुद का हो, किराए का हो या और किसी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जहाँ पे रह रहे वहीं पे आपकी गिनती होगी। आपका घर किराए का है या खुद का है ये जानने के लिए हमारा क्वेश्चन है कि घर आपका खुद का है या किराए का है। किराए का है तो उसके लिए भी आपका कोड है कि आपका घर किराए का है, लेकिन आपका खुद का घर कहीं और है तो उससे हमारे पास ये एक नंबर्स आ जाएंगे कि कितने मतलब पूरे कंट्री में या पूरे देश में कितने लोगों के पास खुद के घर है या कितने लोग किराए पे रह रहे हैं।
2: और अब रवि जी जुड़ गए हैं हमारे साथ हरिद्वार से। जी रवि जी।
4: हाँ जी नमस्कार मैम जी, मेरा ज्वालिया गढ़मीरपुर हरिद्वार से हूँ जी।
2: जी नमस्कार।
4: हाँ जी माँ जी, विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार जी।
1: नमस्ते
4: जी मैम, मैं जानना चाहता हूँ जी, जो हम जनगणना हमें सहयोग करेंगे, अपनी जानकारी देंगे, वो कितनी गोपनीय रखी जाएगी मैम?
1: जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, और कितनी रखी जाएगी इसके लिए मैं एक ही जवाब दे सकती हूँ कि आप भी मांगेंगे बाद में तो आपको भी नहीं दी जाएगी, इतनी गोपनीय रखी जाएगी, क्योंकि पूरी जानकारी एज पर सेंसस एक्ट या सेंसस अधिनियम जो है उसके हिसाब से किसी को दी नहीं जाती, आरटीए में भी दी नहीं जाती, कोर्ट में भी दी नहीं जाती और इंडिविजुअल भी को भी दी नहीं जाती। एक बार फिल होने के बाद वो कॉन्फिडेंशियल रह जाती है और हम सिर्फ एग्रीगेट लेवल पे डेटा रिलीज करते हैं।
2: और अब एक और लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, महेंद्र जी। जी महेंद्र जी।
5: जी नमस्कार।
2: नमस्कार
5: मैम, मेरा सवाल ये है कि अगर पुत्र या पुत्र वधु अगर माता पिता के साथ जीवन यापन करते हैं और उनका भोजन एक ही रसोई में तैयार होता है तो वो अलग परिवार माना जाएगा या उसी में जॉइंट किया जाएगा?
1: जी देखिए, जनगणना के लिए एक ही कंसेप्ट है।

0: अगर एक परिवार मानने के लिए कि वो एक ही चूल्हे पे खाना पकाते हैं या नहीं, या एक ही किचन में खाना पकाते हैं या नहीं, तो इसमें कोई भी हो, अगर वो एक ही किचन से खाना खा रहे हो, खाना पका रहे हो, तो उसको एक ही परिवार माना जाएगा, चाहे वो अनरिलेटेड हो, उनका कोई आपस में रिलेशन भी ना हो। जैसे आजकल हम देखते हैं तीन चार दोस्त मिलके एक छोटा सा फ्लैट लेके रहते हैं और अपना अपना खाना बनाते हैं या मेड को रख के खाना बनाते हैं, तो ऐसे में भी उनको हम एक ही परिवार मानते हैं।
1: अच्छा, इसी से जुड़ा एक और प्रश्न मेरे पास आया था कि अगर मेरी बेटी की शादी हो गई और वो किराए पर रहती है, तो क्या वो अपने घर में उसको सदस्य के रूप में शामिल कर सकते हैं?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं, वो जहाँ पे रहती है वहाँ पे उसका
1: जी
0: उसको गिना जाएगा।
1: अच्छा। और अब गुरुग्राम से सुभाष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुभाष जी।
2: नमस्ते मैम,
1: जी नमस्कार।
2: और आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय, आपको नमस्कार।
0: जी नमस्ते।
2: जी, मेरा सवाल ये है मैम कि जो स्वगणना का जो भूमिका है, जैसे व्यक्ति अगर स्वगणना की आपने जिक्र किया था अभी, तो उस स्वगणना में उसकी कैसी भूमिका को सत्यापन के रूप में जाना जाएगा? उसको मतलब कौन सा ऐसा प्रमुख बिंदु रहेगा जो उसके व्यक्ति के प्रमुख कार्यों को बताकर वह किस तरह से स्वीकारा जाए, उसका सत्यापन करने के क्या तरीके हैं, यही मैं पूछना चाहता था। धन्यवाद जी।
0: जी, तो जैसे मैंने कहा, स्वगणना इस बार पहली बार हम लोग ये फैसिलिटी दे रहे हैं। 2011 तक ये फैसिलिटी नहीं थी। ये इस बार इसलिए इंट्रोड्यूस की कि काफ़ी लिटरेसी भी बढ़ी है, प्लस आजकल बड़े बड़े शहरों में ये देखा जाता है कि घर के सारे सदस्य कहीं ना कहीं काम पे जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक वो बाहर आते हैं, रहते हैं, तो प्रगणक को देने के लिए उतना टाइम उनके पास नहीं होता। लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन भरेगा वो सत्यापित करने भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ हमारे कंसेप्ट्स है, जैसे पानी कहाँ से मिलता है या घर में टॉयलेट की फैसिलिटी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है कभी कभी रिस्पोंडेंट को खुद पता ना चले, क्योंकि प्रगणक को काफ़ी अच्छे से हम ट्रेन करते हैं। तीन चार दिन का उसका ट्रेनिंग होता है, उसको वीडियोस दिए जाते हैं, ट्रेनिंग मटेरियल दिया जाता है, तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन अगर कभी रिस्पोंडेंट या जो खुद भर रहा है स्वगणना की इन्फॉर्मेशन कुछ गलत अगर करे, तो वो प्रगणक एक बार देख के उसको बता के उसको सही करके सत्यापित कर सकता है।
1: अच्छा, एक और प्रश्न हमारे पास आया है रुशाली जी की। स्लम और जेजे क्लस्टर, बेघर आबादी की गिनती मकान जनगणना में कैसे सुनिश्चित की जाती है?
0: जी, स्लम के एरिया के लिए तो हम जैसे मैंने कहा, एक प्रगणक के लिए छोटा सा एक एरिया होता है, तो स्लम के हम अलग से एरिया बनाते हैं,
1: जी
0: उसको अलग से कोडिंग करते हैं ताकि हमारे पास स्लम का डेटा भी आ जाए, क्योंकि उनके घर होते हैं, कच्चे हो चाहे पक्के हो, घर होते हैं, उसकी गणना की जाती है, घर नंबर भी दिया जाता है।
1: जी
0: जो बेघर होते हैं, बेघरों की गणना पहले फेज में नहीं होती, उनको सेकंड फेज में गिना जाता है, जो कि सेकंड फेज हमारा कंप्लीट होने के बाद लास्ट डेट में जो 28 फरवरी का दिन होता है, उसको रात को हम उनकी गणना करते हैं, क्योंकि जनरली ये लोग रात को ही मिलते हैं अपने किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे या किसी ब्रिज के नीचे या इस तरह के जगह पे,
1: जी।
0: तो बेघरों को सिर्फ सेकंड फेज में गिना जाता है।
1: जी, तो श्रोताओं, अब आपके सवाल जो है वो कुछ कम हो रहे हैं, तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं कॉल का। आप परिचर्चा सुन रहे हैं और मकान सूचीकरण आवास गणना पर विषय आज हमने रखा है, क्योंकि जनगणना 2027 जारी है और बहुत तेजी से ये काम चल रहा है। जनगणना कर्मी जो है दिन भर लगे हुए हैं, आपके सवाल का जवाब जो है आप दे रहे हैं, और इसी पर आप कॉल कर सकते हैं 0112331-04-81 पर, और प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। किसी भी तरह का डाउट अगर आपके मन में है और आप इससे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 0112371-7117 पर। हम कर रहे हैं आपके कॉल का इंतजार। त्रुशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास है कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधता वाले राज्यों में प्रश्नावली को समझाने की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?
0: सबसे बड़ी चुनौती तो है उनको अपनी भाषा में समझाना, उनको अपनी भाषा में सारा मटेरियल उपलब्ध कराना, और प्रश्न भी उनके भाषा में होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एक ट्रेडिशन है जनगणना का, कि जनगणना के सारे मटेरियल 16 भाषाओं में उपलब्ध है, जो सारे हमारे मोबाइल ऐप है या पोर्टल है या स्वगणना का वेब पोर्टल है, ये भी 16 भाषा में उपलब्ध है। जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स है ये तो 19 भाषा में उपलब्ध है, क्योंकि हर एक स्टेट की या हर एक रीजन की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो उन सारे लैंग्वेज में ये सारा अवेलेबल है।
1: जी अच्छा, 2011 में जो है अगर बात की जाए तो डेटा की एंट्रिंग, स्कैनिंग और वेरिफिकेशन में लगभग बताया जा रहा है कि 2 साल लग गए थे, लेकिन 2026 में रियल टाइम डेटा अपलोड से रिजल्ट कितने जल्दी आने की उम्मीद है?
0: बहुत अच्छा सवाल है। जैसे 2011 में पहला हमारा पब्लिकेशन आने में 2 साल लगे,
1: जी
0: लेकिन आप देख सकते बहुत सारे क्वेश्चन पे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं जो सेकंड फेज में आती
1: जी
0: है। तो एक एक सीरीज या एक एक पैरामीटर पे डेटा रिलीज करने में 6 से 8 साल लगे थे। जो हमारा लास्ट टेबल रिलीज हुआ था माइग्रेशन पे, वो हमारा 2019 में रिलीज हुआ
1: जी
0: था। क्योंकि हमारे जो पेपर पे होता था तो देश के हर कोने से पेपर कलेक्ट करना, मतलब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद वो कलेक्ट करना, वो स्कैन करना, इसी में हमारे पूरे 2 साल निकल जाते थे। अब हालांकि हमारा डिजिटल हो रहा है, रियल टाइम डेटा आ रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट पहला जो हमारा पब्लिकेशन है वो 8 से 9 महीने में रिलीज हो जाए,
1: जी
0: और बाकी सारी डेटा 2 से 3 साल के अंदर अंदर डेटा पब्लिश हो जाए।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि जनगणना केवल जनसंख्या की गिनती नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है, तो मुझे लगता है कि इसमें अगर सब लोग मिलकर भागीदार बनेंगे तो देश प्रगति की राह पर बढ़ेगा। और अब दिल्ली से विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विकास जी।
3: हाँ जी, हमारे 2 मकान, एक तो गांव में है राजस्थान में, एक दिल्ली में है, तो हमारी जनगणना कहाँ होगी?
0: जहाँ पे आप रहते हैं हमेशा के लिए या ज़्यादा वक्त जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपकी जनगणना होगी। और यहाँ पे बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि अगर आपकी जनगणना यहाँ पे होगी तो गांव के मकान का क्या होगा। जनगणना का उससे कोई भी संबंध नहीं है, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आपकी गणना होगी।
1: हाँ विशाल, ये प्रश्न वैसे देखा जाए तो बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है रोजगार के लिए बाहर आते हैं और गांव का जो घर है उनका या तो खाली पड़ा होता है, लेकिन वो होता है, वो कहीं ना कहीं जाकर जो है उनसे जुड़ा हुआ होता है, तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम लोग वो भर देते हैं, जैसे दिल्ली में अगर रह रहे हैं तो दिल्ली का अगर भर जाता है तो क्या गाँव का भरना जरूरी होगा, और अगर छूट जाता है तो क्या होगा?
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो जनरली जनगणना की यही कंसेप्ट है कि जो आदमी जहाँ पे रहता है, क्योंकि देखिए अगर वो शहर में रहता है तो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक मतलब शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मजबूत बनाना है, इसलिए जनगणना का जो कंसेप्ट है जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी गिनती होगी। हालांकि मैंने फिर एक बार कहती हूँ कि इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपका गांव में भी घर है, गांव में 2 घर है, यहाँ पे 1 घर है, तो इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप जहाँ पे रहते वहाँ पे आपकी गिनती होगी।
1: जी और अब एक और प्रश्न हमारे साथ जुड़ गए हैं, MP से राजेश नीमा जी ने प्रश्न ले रहे हैं उनका। जी राजेश जी।
4: जी मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल ये है कि यदि एक घर में एक मकान, आधा मकान कच्चा है और एक कमरा पक्का है, तो वो जनगणना की कौन सी श्रेणी में आएगा?
0: जी तो जनगणना में अगर सारे सवालों के बारे में एक जिस्ट में बताऊँ तो प्रीडोमिनेंटली यानी मुख्यतः जो यूज होता है उसका इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर सोर्स की अगर मैं बात करूं कि आपके पास कुआं भी है और नल से भी पानी आ रहा है, लेकिन आप नल का पानी ज़्यादा यूज करते हैं तो नल आपको लिखना है। उसी तरह आपका अगर आधा मकान कच्चा है आधा पक्का है, या ज़्यादा मकान पक्का है और थोड़ा सा मकान कच्चा है तो पक्का लिखना है। तो ये डिपेंड है आपका कितना पोर्शन पक्का है कितना पोर्शन कच्चा है।
1: और अभी कॉल लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, पप्पू सिंह जी। जी पप्पू जी
5: नमस्कार। मैम
1: नमस्कार
5: सर, जैसे मकान के अलावा जैसे हमारा प्लॉट है और उसमें हमारे पशु बनते हैं और ईंधन कंडा रखे रहता है और वहाँ पे कुछ भी बना नहीं है, वैसे ही है, उसमें पेड़ वगैरह खड़े हैं, तो उसकी गणना भी होगी क्या?
0: जी नहीं, जैसे हमारे इस फेज का नाम है मकान सूचीकरण, तो वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, खाली प्लॉट को गिनते नहीं है। लेकिन वहाँ पे अगर कोई कच्चा सा शेड भी है जिसमें पशु रखे हुए हैं तो उसको एक नंबर दिया जाएगा और उसको नॉन रेसिडेंशियल करके उसको गिना जाएगा।
1: तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था एक तरीके से, क्योंकि अक्सर लोग गांव में जो होता है पशु वगैरह बांध देते हैं और पूरा एक शेड प्रॉपर ताकि बारिश से उनको बचाया जा सके वो रखते हैं। अच्छा रुशाली जी, एक और ये सवाल है कि 2011 में बैंकिंग सेवा का उपयोग नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार जो है जनधन DBT के बाद इसे जोड़ने का क्या मकसद है?
0: मकसद यही है, क्योंकि एक स्कीम शुरू की गवर्नमेंट ने जनधन योजना, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कितने लोगों के पास या कितने परिवारों के पास बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है, ये देखने के लिए ये प्रश्न नए से जोड़ा गया है
1: जी। और अंत में चलते चलते हम रुशाली जी आपसे चाहेंगे कि जनता से क्या अपील हम करना चाहेंगे ताकि वो इसमें सहयोग दे सकें पूरी तरीके से।
0: जी, जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि पूरा कोऑपरेट करे इस जनगणना के लिए, क्योंकि जनगणना से जो भी आंकड़े आते हैं, फिर से एक बार दोहराती हूँ मैं, पूरी तरह से गोपनीय रखे जाते हैं। इससे कोई भी आपके ऊपर ना कोई टैक्स लगेगा, लेकिन जो भी आंकड़े आप सही आंकड़े देंगे उससे सरकार की नीतियाँ बनेगी, पॉलिसीज बनेगी, जैसे किस गांव में स्कूल बनाने हैं या किस गांव में पानी की सुविधा देनी है, अच्छे पानी देनी है या टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो इस तरह की जो भी वेलफेयर स्कीम्स सरकार बनाती है उसके लिए सही सही जानकारी देना बिल्कुल ज़रूरी है। तो यही एक अपील है कि सही जानकारी दे और कोऑपरेट करे, और जो प्रगणक है हमारे वो अपना काम संभाल के पूरा एक्स्ट्रा काम ये कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से कोऑपरेट तो करे ही, प्लस अच्छे से उनसे उनके साथ बिहेव करे, अच्छे से बात करे।
1: जी बिल्कुल रुशाली जी, क्योंकि 10 साल में एक बार ये मौका आता है कि जब आपके घर की गिनती, आपके सपनों की गिनती जो है वो की जाती है। जनगणना कोई डर की बात नहीं है, ये आपके हक की बात है, और आपका मकान गिना जाएगा तभी मकान तक सुविधा पहुंचेगी। भारत की पहली डिजिटल जनगणना में भागीदार बनिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुशाली जी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आज आप हमारे समक्ष मौजूद रहीं और हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का आपने जवाब दिया।
0: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

के रंग अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेटारेले से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।